अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: की
1: जय।
0: श्री आनंद मंदिर भगवान की
1: जय।
0: श्री कौशल्यानंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री दशरथ नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री कैकेयी नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री सुमित्रा नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री चारु भैयन की श्री हनुमान जी महाराज की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की श्री काशी विश्वनाथ की
1: जय।
0: श्री अयोध्या धाम की
1: जय।
0: श्री सरयू महारानी की जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की
1: जय।
0: गोस्वामी श्री तुलसी

0: रामचंद्र की जय। श्री अयोध्या राम जी लला की
1: जय।
0: श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की। श्री रमा

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

स्वागत है। ये विशेष प्रसारण आप तक पहुंचता है एफएम बालटल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें डीटीएच यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, ये विशेष प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आप तक पहुंचता है। इस विशेष प्रसारण में मैं हूं आपकी साथी उद्घोषिका इरम। हम सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं और आप सभी की सुखद यात्रा की प्रार्थना करते हैं।

श्रोताओं, आज 17 अगस्त 2026 को श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी नाग पंचमी का पवित्र पर्व मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि आज सावन का तीसरा सोमवार भी है, जिससे आज का दिन शिव भक्तों और नाग देवता की पूजा के लिए अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आया है। श्रोताओं, घाटी की ठंडी पहाड़ी हवाओं में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। आइए सबसे पहले भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं।

श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा आप हमें DTH, YouTube की आकाशवाणी आराधना चैनल, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म तथा न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज का दिन अत्यंत पवित्र है। एक तरफ जहां श्रावण सोमवार भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रदेव और मन की शांति का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ नागपंचमी का पर्व शिव जी के आभूषण वसुकी नाग और सर्प देवताओं के आधार का पर्व है। पुराणों में कथा आती है कि जब समुद्र मंथन के समय विशाल हलहल विष निकला, तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। विष की जलन को कम करने के लिए देवताओं और भक्तों ने उन पर जल और दूध अर्पित किया। नाग देवताओं ने शिवजी के इस त्याग में उनका साथ दिया, इसलिए आज के दिन नाग देवता और महादेव दोनों की एक साथ पूजा होती है। श्रोताओं, कश्मीर घाटी का ऐतिहासिक संबंध भी नाग परंपरा से अत्यंत गहरा है। अनंतनाग, वेरी नाग, कौसर नाग, ये सभी पवित्र स्थान हमारी इस ऋषि भूमि की सांस्कृतिक धरोहर हैं। इस पावन पर्व में घाटी में आने वाले हर भक्त इस आत्मिक चेतना को महसूस करता है।

श्रोताओ, आज नागपंचमी के दिन ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण शुरू होता है। श्रीनगर के ऐतिहासिक दशमी अखाड़ा में भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक की विशेष छड़ी पूजन महंत दीपेंद्र गिरी जी की अध्यक्षता में संपन्न हो रही है। दशमी अखाड़ा में आम और खास का जमावाड़ा लगा हुआ है। वेद मंत्रों के उच्चारण और घाटी की सांस्कृतिक तरंग के बीच छड़ी मुबारक की पूजा की जा रही है। आज की पूजा के बाद 22 अगस्त को ये पवित्र छड़ी मुबारक अपनी पद यात्रा पर रवाना होगी। ये यात्रा पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी से होते हुए 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन पवित्र गुफा पहुंचेगी। यहाँ सुरक्षा और प्रशासन के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छड़ी मुबारक की ये पदयात्रा कश्मीर की सद्भावना और रिवायती मेहमान नवाजी की एक जीता जागता प्रतीक है।

श्रोताओं, आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठा होगा कि छड़ी पूजन के लिए नागपंचमी का ही दिन क्यों चुना जाता है। श्रोताओं, कश्मीर घाटी में नाग परंपरा का अत्यंत प्राचीन इतिहास है। नीलमत पुराण के अनुसार कश्मीर की धरती पर नाग देवताओं का विशेष स्थान रहा है। नागपंचमी के दिन शिवभूषण वसुकी नाग की पूजा के साथ ही छड़ी मुबारक को यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। आज की इस पूजन के पश्चात छड़ी मुबारक को भक्तों के लिए दशमी अखाड़ा में रखा जाता है, जहां हजारों भक्त आकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्रोताओं, आज नागपंचमी की पूजन के बाद छड़ी मुबारक की मुख्य पदयात्रा 22 अगस्त को श्रीनगर के दशमी अखाड़ा से प्रारंभ होगी। ये पवित्र यात्रा पारंपरिक पहलगाम मार्ग से होते हुए आगे बढ़ती है। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप पर इसका पहला मुख्य विश्राम स्थल है। उसके बाद चंदनवारी और शिशनाग के पहाड़ी मार्गों से होते हुए वहाँ वो विश्राम करते हैं। फिर पंचतरणी पर रुकने के बाद पवित्र गुफा से जो पहला अंतिम पड़ाव है पंचतरणी, उसके बाद श्रवण पूर्णिमा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन दिन छड़ी मुबारक श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में प्रवेश करती है, जहां अंतिम महापूजन और विसर्जन होता है। श्रोताओं, इस पूरे मार्ग में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। श्रीनगर से लेकर पवित्र गुफा तक स्थानीय कश्मीरी भाई, व्यापारी और सेवादार इस छड़ी मुबारक का स्वागत करते हैं और यात्रियों के लिए खाने पीने व रहने की व्यवस्था में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। छड़ी मुबारक की ये यात्रा कश्मीर की सदियों पुरानी कश्मीरियत और आपस की सद्भावना का सबसे सुंदर उदाहरण है।

पृषदश्वामरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः

श्रोताओं, अब विस्तार से समझते हैं श्रवण सोमवार के गहरे आत्मिक अर्थ और इसके धार्मिक महत्व को। श्रवण का पूरा मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय सोम है, परंतु इस महीने में आने वाले सोमवार, जिसे हम श्रवण सोमवार या सावन सोमवार कहते हैं, उनका महत्व सबसे अनूठा और विशेष माना गया है। आपके मन में ये विचार अवश्य आया होगा कि आखिर सोमवार का दिन महादेव से इतना गहरा क्यों है। श्रोताओं, सोमवार का शाब्दिक अर्थ है सोम का दिन, सोम यानी चंद्रदेव, जो भगवान शिव के मस्तक पर तृतीय के चंद्रमा के रूप में विराजमान है। चंद्रदेव को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण करके ये संदेश दिया है कि जो व्यक्ति महादेव की शरण में आता है, उसका मन शांत, स्थिर और निश्चल हो जाता है। इसी कारण श्रवण मास के सोमवार को किया गया पूजन और व्रत व्यक्ति के मन की चंचलता को समाप्त करके उसे आत्मिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है।

श्रोताओं, पुराणों में आता है कि श्रवण मास के दौरान ही देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था। इस मंथन से जब सबसे पहला विशाल और जहरीला विष हल हल निकला तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान शिव ने बिना किसी संकोच के उस विष को पी लिया और अपने गले में रोग धारित कर लिया। विष के ताप से महादेव का कंठ नीला पड़ गया, जिसे उन्हें नीलकंठ का नाम दे दिया गया। विष के उस प्रचंड जलन और गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवताओं, ऋषियों और नाग देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल, कच्चा दूध और शीतल दही अर्पित किया था। बस तभी से श्रवण सोमवार

के दिन शिवलिंग पर जल अभिषेक कर और दूध अभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। ये जल अर्पण वास्तव में महादेव के उस महान त्याग के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है।

0: यमुना जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण लिए चल रहे हैं हम आपको आकाशवाणी दिल्ली जहां से आप समाचार सुनेंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
0: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ

0: नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
3: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 011-23-31-04-81 या 23-71-17-17 या 23-71-71-06 और 23-31-44-44। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उड़ीसा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
4: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
5: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
6: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और UGC नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़े खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोकाटाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की CAG की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जाँच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में JEE, नीट, CUET के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आज़ादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Self-enumeration for census 2027 to begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir, and BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. Self-enumeration for Census 2027 will begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir and continue till August 31st. Our correspondent has filed this report.
9: Ladakh would become the first union territory in the country to complete the Census 2027 exercise with population enumeration scheduled from September 1st to 30. The same enumeration beginning today. Around 637 enumeration blocks would be created for complete coverage of Ladakh. Chief Principal Census of

छः छः लाख करोड़ रुपए की तखमीना लागत के साथ मुख्तलिफ वजारतों के बुनियादी ढांचे के 396 प्रोजेक्टों को मंजूर करने के लिए सिफारिश की गई है। इसके लिए कॉमर्स और सनअत की वजारत ने कहा है कि इन प्रोजेक्टों में 256 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है और इनमें से 198 प्रोजेक्ट जेर नफाज हैं। उसने मजीद कहा है कि इन प्रोजेक्टों का नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG मैकेनिज्म के जरिए कदर व कीमत का अंदाज

0: झारखंड, उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में भी इस तरह के हालात रहने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आज आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी शदीद बारिश का इम्कान है। उसने ये भी कहा है कि अगले 2 दिन से 3 दिन के दौरान अंडमान निकोबार जजीरे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। जबकि इसी तरह के हालात मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में भी रहने की पेशगोई की है। उड़ीसा में शदीद बारिश का इम्कान है क्योंकि आज खलीज बंगाल के ऊपर हवा का कम दबाव और शदीद हो सकता है, जिससे शिमाली जिलों में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब होने का खतरा है। महकमे मौसमियात IMD ने 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और शिमाली उड़ीसा में कई मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। दरियाओं में तुगियानी और लाखों लोगों के मुतासिर होने के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने राहत कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। वज़ीर आला मोहन चरण मांझी आज सैलाब से मुतासिरा भद्रक और जाजपुर जिलों का फजाई जायजा लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: सैलाब से मुतासरा इलाकों में सूरत हाल खराब है। कई शुमाली जिलों के इलाकों में पानी भर गया है। रियासती हुकूमत ने मुतासरा जिलों में अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं और 3 IAS अफसरान को तैनात किया है ताकि भद्रक, बालासोर और जाजपुर में राहत और बाजाबाद कारी के काम में तालमेल बरकरार रखा जा सके। एहतियाती कदम के तौर पर मयूर भंज, केवनझार, भद्रक, जाजपुर और बालासोर में आज स्कूल और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। माहीगीरों को मशवरा दिया गया है कि वो कल तक समुद्र में ना जाएं। बालासोर जिले के जालेश्वर में 2 अफराद की मौत हो चुकी है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: पुंछ जिले में मंडी तहसील के राजपुरा गांव में कदीम बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर के लिए 12 दिन तक चलने वाली सालाना श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा आज सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दौरान शुरू होगी। ये यात्रा 28 अगस्त तक जारी रहेगी और रक्षाबंधन को इख्तिताम पसीर होगी। हुकाम ने पुंछ, राजौरी और राहदारी रास्तों पर सख्त कसीर सतही सिक्योरिटी और निगरानी बढ़ा दी है। ये यात्रा पुंछ जिले के मंडी तहसील में राजपुरा गांव में वाकई भगवान शिव के कदीम बुद्ध अमरनाथ मंदिर में श्रावण के मानसून पवित्र महीने के दौरान हर साल मुनक़िद होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के आज सुबह पुंछ के सरहदी जिले की जानिब जम्मू में भागवती नगर यात्री निवास से यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। राजौरी और पुंछ के सरहदी जिलों के राहदारी रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी और निगरानी बढ़ा दी गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस के खसूसी ऑपरेशन ग्रुप के दस्ते दशनमी अखाड़ा जैसे ठहरने के मकाम के नज़दीक तलाशी और तस्दीक की कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। अकीदतमंदों के दस्ते पुलिस मुहाफिजों की निगरानी में पेश कदमी करेंगे। जिला इंतजामी और मकामी इदारों ने वाटर प्रूफ खेमों और कम्युनिटी किचन, पार्किंग और हिफ्जान सेहत मकाम समेत सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। जम्मू कश्मीर से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। खवातीन के सिंगल्स में दुनिया की साबिक चैंपियन और 9वें दर्जे की खिलाड़ी पीवी सिंधु आयरलैंड के सूफिया नोबेल का सामना करेंगी, जबकि खवातीन के डबल्स में ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले राउंड में स्पेन की पौला लोपेज और लूसिया रोड्रिक्स का मुकाबला करेंगी। शाम में भारत के आयुष शेट्टी मर्दों के सिंगल्स के जुमरे में चीन के दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन ओशी यूकी के खिलाफ खेलेंगे। मर्दों के डबल्स के जुमरे में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी पहले ही एक बाय हासिल करने के बाद दूसरे राउंड में पहुंच गई है। मर्दों के क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के खिलाफ गाले बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन अपनी पहली इनिंग का दोबारा आगाज करेगा। भारत ने कल के खेल के अख्तितम पर 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन बनाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव अभी क्रीज पर ही हैं। इससे कबल देवदत्त पडिक्कल ने शानदार सेंचुरी बनाते हुए 167 रन का स्कोर किया, जबकि KL राहुल ने 82 और ध्रुव जुवेल ने 51 रन का शानदार स्कोर किया। मर्दों की हॉकी में आज नीदरलैंड्स में वागनेर हॉकी स्टेडियम में भारत की टीम सेकेंड पूल के डी के अपने मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। इसका मकसद FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में अपनी जीत के सिलसिले को

0: जारी रखना है। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे गुमराह कुन लेबलिंग और सारिफीन के हुकूक से मुतालिक बेदारी के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। प्रोग्राम के दौरान सामईन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं। ये नंबर्स हैं 011-233-10481, 011-2371-7117, 011-2371-7106। अमले अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में नेशनल अनुभव अवार्ड 2026 अता करेंगे। अमले अवामी शिकायत और पेंशन की वजारत ने कहा है कि अवार्ड्स की तकसीम से मुतालिक तकरीब में पेंशन मित्र से मुतालिक किताबचा और मुल्क सतह पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC मुहिम 5 के लिए रहनुमा खतूत भी जारी किए जाएंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया। कौन है? कौमी राजधानी दिल्ली से शायब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारात ने लाल किले की फसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को सफे अव्वल पर शाये करते हुए वजीर आजम के इस बयान को खसूसियत के साथ नुमाया किया है कि नौजवानों को मुफ्त कोचिंग और मसनू जहानत AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के शिनाख्तशुदा बर्फानी इलाकों में 2027 की मरदम शुमारी के लिए खुद इंदराज का अमल आज से शुरू हो रहा है। इम्तहान मुनक़द कराने वाली कौमी एजेंसी NTA 3 मजामीन इंग्लिश, कॉमर्स और समाजी उलूम के पर्चों में गलतियों की शिकायत के बाद इन तीनों मजामीन के लिए UGC नेट इम्तहान दोबारा मुनक़द कराएगी। झारखंड में एहतजाज करने वाले तलबा आज रांची में रियासती सरकार के साथ बातचीत का ताज़ा दौर शुरू करेंगे। महकमे मौसमियात ने ओडिशा गंगोत्री मगरबी बंगाल में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में कदीम बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर के लिए सालाना श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: श्यामन्ना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं DTH पर, YouTube पर आकाशवाणी की आराधना चैनल और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म के अलावा न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, ये विशेष प्रसारण प्रतिदिन आप तक पहुंचता है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। श्रोताओं, इस वर्ष 3 जुलाई को अमरनाथ जी यात्रा जो है वो आरंभ हुई थी और आज तक लगभग 4,80,000 से ज़्यादा तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। वहाँ उन्होंने माथा टेका है, पूरी इंसानियत के लिए उन्होंने मनोकामनाएं जो हैं वो वहाँ की हैं। आपको ये याद दिलाना चाहेंगे कि जैसा आप जानते हैं, यात्रा ट्रैक्स पर मरम्मत की वजह से प्रशासन ने 9 अगस्त से ही यात्रा को स्थायी रूप से स्थगित किया, क्योंकि यात्रा ट्रैक्स पर मरम्मत होना है। पर पहाड़ी क्षेत्र में जो वर्षा हुई उससे यात्रा ट्रैक्स में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और वहाँ मरम्मत अभी चल रही है। पर आपको ये बताते हैं कि छड़ी मुबारक की जो पदयात्रा 22 अगस्त से शुरू होगी वो बिल्कुल अपने स्केड्यूल के हिसाब से ही होगी, और क्योंकि यात्रा ट्रैक्स पर अभी मरम्मत चल रही है और वो बिल्कुल अपने स्केड्यूल के हिसाब से 22 अगस्त को छड़ी मुबारक जो है वो निर्धारित समय पर ही वहाँ से पद यात्रा करके पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी और 28 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा के दिन पवित्र गुफा में प्रवेश करेगी, जहाँ महापूजन, आरती और छड़ी विसर्जन के साथ इस वर्ष की यात्रा संपन्न होगी। श्रोताओं आपको याद दिलाना चाहेंगे कि मार्गों पर मरम्मत का काम बहुत ही अच्छे से चल रहा है, ताकि छड़ी मुबारक की ये पदयात्रा पूरी सुरक्षा और श्रद्धा के साथ अपने पड़ावों तक पहुंच सकें।

श्रोताओं, श्रीनगर के ऐतिहासिक दशमी अखाड़ा में आज नाग पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक की विशेष छड़ी पूजन महंत देपेंद्र गिरी जी की अध्यक्षता में पूरे विधि रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो रही है। दशमी अखाड़ा में वेद मंत्रों के उच्चारण और घाटी की संस्कृति तरंग के बीच छड़ी मुबारक को शुद्ध जल, दूध, दही और गंगा जल से स्नान करवाया जा रहा है। भस्म, बेलपत्र व ताजा फूल अर्पित करके विशेष आरती की जा रही है। यात्रा मार्गों पर मरम्मत कार्य के बावजूद छड़ी मुबारक की ये प्राचीन परंपरा अबद्ध रूप से जारी है। आज दशमी अखाड़ा में छड़ी मुबारक को भक्तों के लिए रखा जाएगा, जहां वो छड़ी मुबारक के दर्शन करेंगे और दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो मांगेंगे और पूरी इंसानियत के लिए भी दुआ करेंगे। श्रोताओं, आपको बताते चले कि 22 अगस्त से छड़ी मुबारक श्रीनगर के दशमी अखाड़ा से अपनी पारंपरिक पदयात्रा पर रवाना होगी और पहले पड़ाव पहलगाम पहुंचेगी। 23 और 24 अगस्त को पहलगाम में विश्राम और विशेष पूजा अर्चना होगी। 25 अगस्त को छड़ी मुबारक पहलगाम से रवाना होकर चंदनवाड़ी पहुंचेगी। 26 अगस्त को चंदनवाड़ी से आगे बढ़कर पवित्र शेषनाग लेक के तट पर विश्राम होगा। 27 अगस्त को शेषनाग से प्रस्थान करके छड़ी मुबारक पंचतरणी पहुंचेगी और 28 अगस्त श्रवण पूर्णिमा के दिन पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक प्रवेश होगा, जहां महापूजन, आरती और छड़ी विसर्जन के साथ इस वर्ष की यात्रा अपने समापन को पहुंचेगी।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप तक पहुंचता है एफएम पहलगाम और एफएम बादल के अलावा यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप तथा वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, श्रवण सोमवार और नाग पंचमी के शुभ पर्व पर पेश है हमारे साथी आमिर अशरफ की पवित्र छड़ी के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी जी के साथ छड़ी मुबारक यात्रा 2026 की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व पर बातचीत।
1: श्रद्धालुओं और श्रोताओं के लिए आकाशवाणी श्रीनगर का ये विशेष प्रसारण। आप इस विशेष प्रसारण को सुन रहे हैं एफएम बालतल से 103.7 मेगाहर्ट्ज़ तथा एफएम पहलगांव 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: देश विदेश में कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी इस प्रसारण को सुना जा रहा है। हम अमरनाथ यात्रा, इसकी प्राचीन परंपरा, ताजा जानकारी और अन्य सूचनाएं भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज इस पवित्र अवसर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री अमरनाथ जी के शुद्ध शडिका के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी जी। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आमिर जी।
0: सबसे पहले सर, आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे। आप वर्षों से पवित्र छड़ी मुबारक के साथ अमरनाथ यात्रा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा अनुमान है कि लगभग 30 वर्षों से आप इसकी अगुवाई कर रहे हैं।
1: जी, शिव जी की अनुकंपा से।
0: सर, आज हम आपसे नागपंचमी, श्रावण सोमवार, छड़ी मुबारक और अमरनाथ यात्रा के गहरे धार्मिक, आध्यात्मिक, पारंपरिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर बात करेंगे।
1: जी
0: मान जी, सबसे पहले अगर हम कहें कि इस यात्रा को सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि जीवन, मृत्यु और मोक्ष की दार्शनिक यात्रा कहेंगे तो शायद गलत नहीं होगा।
1: जी,
0: सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके नजदीक अमरनाथ यात्रा का पारंपरिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है?
1: जी, जैसा कि हम जानते हैं, कश्मीर प्राचीन काल से ही शैव संप्रदाय तथा शिव उपासकों की धरणी रही है। यहाँ लगभग 45 शिव धामों का उल्लेख मिलता है, उनमें अमरनाथ शिरोमणि श्रेष्ठ शिव धाम है। अमरनाथ जी का जो प्राचीन नाम है वह अमरेश अथवा अमरेश्वर के रूप में भी मिलता है।
0: जी,
1: जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे ग्रंथ इस यात्रा के बारे में कहते हैं कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव से यह आग्रह किया कि मुझे वो कथा कहें जिसको सुनने से जीव, जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है, तो भगवान शिव किसी ऐसे निर्जन स्थान की खोज में थे, तलाश में थे, जहां पर कोई दूसरा अनाधिकारी उस कथा को जब वो कहें तो वो सुन ना पाए। तो जो कथा है उसके अनुसार भगवान शिव सबसे पहले पहलगांव, पहले इसका जो नाम था, जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें मिलता है बैलगांव,
0: बैलगांव
1: या पहलगांव, पहला गांव। तो उन्होंने अपने जो वाहन है उसको नंदी को वहां छोड़ा, उसके पश्चात वो चंदनवाड़ी में चंद्र का विसर्जन किया, उसके पश्चात शेषनाग में शेषनाग को छोड़ा और पंचतरणी में गंगा जो धारण की है उसको छोड़ा और अंततः उस पवित्र गुफा में वो पहुंचे और उन्होंने वह अमर कथा कही। तो यह यात्रा, जैसे मैंने कहा, जो इसका इतिहास है कश्मीर का वो अत्यंत प्राचीन है। मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि यह सती सप्ता, सर का अर्थ सरोवर, तो ये देवी के नाम से ये पूरा सती सब था, ये पूरा जलमग्न था, चारों तरफ पानी ही पानी था, केवल तीन शिखर विद्यमान थे, दृष्टिगोचर थे, हरमुख जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, लगभग 5000 मीटर से अधिक उसकी चोटी है, ऊंचाई है, विष्णुपाद जो कि कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में है वो भी लगभग इतनी ही ऊंचाई पर है, कौसरनाग की यात्रा हम जानते हैं कि वहां से चलती है, और तीसरा अमरेश जो पुराना नाम है ग्रंथों में हमें मिलता है, वो अमरनाथ जी एक प्रचलित नाम है आज। तो वो जो अमरनाथ की चोटी है, तीन, हरमुख, विष्णुपाद और अमरनाथ जी, ये तीन शिखर विद्यमान थे, दृष्टिगोचर थे, बाकी ये पूरा जलमग्न था। तो ये उसके बाद जब ये यात्रा हमारी प्रारंभ हुई तो ऐसा मत है कि भृंगेश ऋषि संभवतः वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले हेमलिंग, या यूं कहना चाहूंगा मैं इसको कि भगवान शिव आज भी श्रावण मास में हिमलिंग के रूप में वहां विद्यमान रहते हैं। तो पूरे ना केवल भारत बल्कि विदेशों के जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त, वो उनकी दर्शन, उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। तो ये जो भृंगेश संहिता, महर्षि कश्यप के समय ही भृंगेश ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ। भृंगेश ऋषि एक महान इतिहासकार, वह भूगोलविद हुए, उन्होंने कश्मीर का इतिहास, उसका भूगोल भृंगेश संहिता नाम के ग्रंथ से में लिखा उन्होंने। इनके अनुसार जब सती कश्मीर जब सती सर ही था तब वह भ्रमण करते हुए आए, और जैसा मैंने बताया ये तीन शिखर विद्यमान है और सातवें मन्वंतर में कश्मीर तथा स्थान का परिचय मिला। भृंगेश ऋषि ने अमरनाथ यात्रा का इतिहास लगभग 450 श्लोकों में विस्तार से इसका वर्णन किया है, और भृंगेश संहिता ही ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो कश्मीर के भूगोल, इतिहास एवं संस्कृति पर विशेष प्रकाश डालता है। तो इस ग्रंथ की मौलिक देन यह है कि इसमें अमरेश, अमरेश्वर एवं अमरनाथ इन तीनों नामों का उल्लेख है। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो अमरनाथ जी का जो प्राकृतिक रूप से बनने वाला स्वरूप हिमलिंग रसलिंग है, इसके उन्होंने दर्शन संभवतः पहले ही सबसे पहले भृंगेश ऋषि ने किए। तो इस रहस्यमय स्थान का और उस बनने वाले प्राकृतिक हिमलिंग का रहस्य अन्य लोगों को कहा, तब से ये यात्रा प्रचलन में है। मुझे स्मरण है हमारे पुरोहित मार्तंड में आज भी हैं, लेकिन मैं काफी पुरानी बात कर रहा हूं तो वो काफी उनकी आयु थे। उन्होंने मुझे एक बार चर्चा के दौरान काफी वर्ष पहले बताया कि मार्तंड में गर्मियों में भी 14 डिग्री से अधिक तापमान नहीं होता था। जैसे आज श्रीनगर में किसी समय 36 डिग्री या 35 डिग्री के बाद वर्षा होती है, तो वो बताते थे कि 15 डिग्री होते ही वर्षा, इतनी प्लांटेशन थी, आबादी कम थी, पॉल्यूशन कम था, तो यात्रा की संख्या भी उसी के अनुरूप में, क्योंकि जनसंख्या कम थी उसी के अनुपात में यात्रा भी बहुत कम थी, बिल्कुल सीमित संख्या में यात्री जाते थे। देश के विभिन्न प्रांतों से आने वाले तीर्थयात्री वहां पड़ाव करते थे, उसके बाद वो अपने खाने पीने का सामान, अपना सामान लेकर, कुछ बनाने खाने का, घोड़े और खच्चरों और कुली को लेकर वो जाके दर्शन करते थे, पड़ाव करते हुए वापस आते थे और मार्तंड में उनकी यात्रा वो समाप्त होती थी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब ये यात्रा प्रारंभ हुई तो ये अनेकों मार्ग जो थे ये दुश्वार थे, चलना भी बोझिल था। तो जब यात्रा ये चंदनवाड़ी से ऊपर चलते हैं तो पिस्सू टॉप एक आता है स्थान, बिल्कुल जो पहली चढ़ाई है, तो पिस्सू नाम का जो पुरानी कथाएं हैं उनमें कहते हैं वो पिस्सू नाम का दैत्य था जो आने वाले तीर्थ यात्रियों में, उनकी यात्रा में वो बाधा उत्पन्न करता था। ऐसे ही जब वो आगे चलते थे तो जो वाउबल है, जो वाल्बल कह रहा हूं, ये नागाकोटी, शेषनाग से थोड़े से पूर्व नागाकोटी, वहां भी असुर शक्तियों का वास था। जैसे हम रामायण में या और ग्रंथों में पढ़ते हैं कि ऋषि मुनि जब यज्ञ किया करते थे, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में आता है कि वो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर गए राजा दशरथ से मांग कर कि ये दो वीर मुझे अपने पुत्र दें ताकि हम जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो असुरी शक्तियां हमारे उन यज्ञ और अनुष्ठान में विघ्न पैदा करते हैं, तो हम ये आके वहां हमारी रक्षा करें, विघ्न ना करें। तो जब ये असुरी शक्तियां, जिनका मैंने उल्लेख किया, पिस्सू नाम का दैत्य नागाकोटी में जो दूसरी असुरी शक्तियां थी, तो सबने मिलकर भगवान शिव से ये प्रार्थना किया कि हमें कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे हमारी यात्रा निर्विघ्न समाप्त हो। तो ये दो शक्तिकाएं शिव जी ने उनको प्रदान की। उस समय ये भृंगेश ऋषि की जो भृंगेश संहिता उसमें इसका उल्लेख है। तो ये शक्तिकाएं उनको दी, वास्तव में ये काष्ठ की है, लकड़ी की है, लेकिन इनको सुरक्षित करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए रजत जड़ित है इस समय। तो शिव और शक्ति का प्रतीक उनको कहा गया कि आप नाग पंचमी के पूजन करके मार्ग में आने वाले इन पड़ावों पर इसी सामग्री से पूजन करते हुए श्रावण पूर्णिमा के दिन जाकर उस स्वयंभू बनने वाले हिमलिंग को के दर्शन आप करेंगे तो आपकी यात्रा निर्विघ्न होगी और आपके जो मनोरथ हैं वह पूरे होंगे। तो इस तरह से ये यात्रा अगाध रूप से चल रही है। तो हमें बीच में ऐसा एक जगह उल्लेख आता है कि बूटा मलिक जो कि बटकूर पहले हमसे कोई 10-12 किलोमीटर पहले एक गांव है, तो उन्होंने बूटा मलिक जो उनके इंसेस्टर थे उन्होंने इस गुफा की खोज की।
0: उनके पूर्वजों ने, बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनके जो पूर्वज थे उनका नाम था बूटा मलिक। बूटा मलिक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उस गुफा को खोजा। तो मैं सिर्फ इतना सा अपने बात को यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि यह संभव नहीं है कि उन्होंने उस गुफा को खोजा। मैं ये कहना चाहूंगा कि खोजा की जो शब्द है वो उपयुक्त नहीं है।
0: सही, बिल्कुल।
1: पुनर्खोज किया ये संभव है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया आज श्रीनगर में पिछले वर्ष तो बर्फबारी ना के बराबर हुई और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में हुई। हम कल्पना कर सकते हैं आज से 100 साल, 150 साल या 200 साल पूर्व कितनी यहाँ बर्फबारी रही होगी। मुझे वो जो जिनकी मैंने अर्जुन नाथ जी उनका नाम था जिनकी मैंने चर्चा कर रहा था, जिन्होंने मुझे बताया कि 14 डिग्री से अधिक तापमान उन्होंने मार्तंड में नहीं देखा। तो उन्होंने बताया कि हम जब सर्दियां होती थी तो पहली मंजिल पे आप कश्मीर से, आपको बेहतर जानकारी है कि यहाँ आर्किटेक्चर जो है वो फ्रेंच है, खिड़कियां ऊपर बड़ी बड़ी होती हैं, तो नीचे पूरा स्नो बेड होता था, वो अपनी पहली मंजिल की खिड़कियां खोलकर बाहर कदम रखा करते थे बर्फ के ऊपर। तो ये संभव है, मतलब मैं अपनी जगह इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि ये संभव है कि कुछ वर्ष तक ये यात्रा, जैसे आप देख रहे हैं महाराजा के समय 1917 में नेचुरल कैलामिटी हुई, मेरी मैं विटनेस था जब 1996 में अत्यधिक वर्षा भी हुई और बर्फबारी हुई, जिसमें दुर्भाग्यवश लगभग 250 यात्रियों ने अपनी जान को भी खोया। तो इससे पूर्व भी अनेकों बार यहाँ हुई होंगी और ये यात्रा नेग्लिजिबल लोग जाते होंगे, और शायद किसी बर्फबारी या किसी अन्य प्राकृतिक कारण से ये यात्रा वैक्यूम बना, ये यात्रा नहीं हुई। और फिर ये जो बूटा मलिक हैं ये इस कहानी में जुड़ते हैं कि उन्होंने जाके उसको खोजा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं हिस्ट्री में कि जैसे बौद्ध है, बौद्ध धर्म लगभग 2300 वर्ष पूर्व इसका इतिहास है, जैन धर्म जो है लगभग महात्मा उनके जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी उसके पश्चात ही तो जैन धर्म हुआ। उसके बाद आप देखेंगे अगर ईसाई, तो ईसाई ईसा मसीह आज हम 2026 में हैं, तो 2026 वर्ष पूर्व ईसाई शब्द इतिहास में नहीं था। और अगर हम आन की जो सिख हैं उनकी बात करें तो गुरु नानक देव जी के बाद, उनका जन्म शायद 1469 या 1479 में उनका जन्म हुआ, तो उनके पश्चात भी गुरु गोविंद सिंह जी के बाद उनके समय से सिख शब्द इतिहास में आया, आप कह सकते हैं लगभग 300 से अधिक वर्ष हुए। तो ये मैं इससे इनकार नहीं करना चाहूंगा कि बूटा मलिक जी ने इसकी पुनर्खोज नहीं की होगी, तो लेकिन खोज शब्द जो है वो उपयुक्त नहीं है। जैसे आज जो पुरातत्व विभाग है अनेकों स्थानों में उड़ीसा में खुदाई हुई तो एक स्तूप जमीन से निकला, तो वो कहें कि उन्होंने खोजा, तो खोजा शब्द क्योंकि वो पहले से ही मौजूद है वहां, और हमारे जो जो ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये यात्रा काफी पुरानी है, जो हमारे बूटा मलिक हैं इनकी जो इनकी अभी भी वो ग्रेव है वहां, शायद 1875 है या शायद, मुझे पूरा स्मरण नहीं है लेकिन लगभग ऐसे ही है। तो जो इतिहासकार हैं, जैसे महान इतिहासकार, कश्मीरी इतिहासकार कल्याण राज सरंगनी में इस पवित्र यात्रा को अमरेश्वर यात्रा के नाम से अभिहित किया है। दुग्धावती ध्वलम तेन सरो दूर गिरो कृतम अमरेश्वर यात्रायाम जनरे व्यापी दृश्यते। कल्याण से पूर्व भी ये यात्रा प्रसिद्ध थी। एक स्थान पर राजा सांदीमती का उल्लेख आता है जिन्होंने हिमलिंग की दर्शन और अर्चना कर अपने जीवन को सफल किया, और जो सांदीमती है इनका समय काल ईसा पूर्व 3000 वर्ष का है। जॉन राजा ने भी अपने ग्रंथ में कश्मीर के प्रसिद्ध राजा जैनुलाब्दीन बादशाह के अमरनाथ जाने का उल्लेख किया है। नील मत पुराण में भी अमरनाथ यात्रा का उल्लेख है, अमरेश नरासनात्वा गो शतस्य फलम लभेत। तो इससे भी इस यात्रा की प्राचीनता जो है वो सिद्ध होती। तारिकी हसन के जो लेखक थे परिजादा हसन, जो महाराजा रणबीर सिंह जी के समय भी विद्यमान थे, उन्होंने भी इस यात्रा को तीर्थ अत्यंत प्राचीन कहा है। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस यात्री को यात्रा किया और इस यात्रा का वृत्तांत लिखते हुए इसको अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक कहा। जो उल्लेख मेरी जानकारी है, स्वामी विवेकानंद जी ने जुलाई 1898 में 1898 में जुलाई मास में ये यात्रा किया। उनके साथ जो सिस्टर निवेदिता है, उन्होंने भी अपने जो उल्लेख है उनमें ये लिखा कि स्वामी जी ने वहाँ जाके दर्शन किए और उनका जो अनुभव था वो अलौकिक था, दिव्य था। और वो पूरा उस गुफा को उन्होंने चार्ज्ड महसूस किया कि वो पूरी जो गुफा थी वो औजपूर्ण थी और उन्होंने उस जो ऊर्जा थी उसको महसूस किया। तो अब ये आज भी सभी अभी आज भी ये जो यात्रा है ये शिव भक्तों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। और शास्त्रोक्त विधान से की गई ये यात्रा पुण्यदायिनी, ऐहविक तथा पारलौकिक फलदायिनी है एवं मोक्ष प्रदा है। श्रद्धा निष्ठ यात्री जो है अंततः शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये तीर्थ यात्रा आज भी चल रही है और इस वर्ष भी हमने देखा कि लगभग मुझे लगता है पहले 10 या 12 दिन में ही 3,00,000 यात्रियों ने दर्शन किए, 30,000 के प्रति लगभग औसत बनती है। तो और कुल मिला के शायद 4,75,000 से अधिक तीर्थ यात्री दर्शन कर सकुशल अपने घरों से लौटे। और इस वर्ष का जो एक एक्सेप्शनल एक अलग सा विषय ये रहा कि इस बार वर्षा अत्यधिक थी, मार्ग काफी जगह से अवरुद्ध हुआ। तो पहलगांव से तो मुझे ऐसा स्मरण आता है कि 19 जुलाई के बाद से यात्रा प्रारंभ भी नहीं हुई।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। और जबकि पहलगांव में काफी बार रुकी, काफी बार चली और अंततः अब जो मंडल आयुक्त है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, उन्होंने एक स्टेटमेंट करके बताया कि 9 अगस्त के बाद दोनों मार्गों से यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। तो शायद संभवतः जो मार्ग है वो काफी क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसकी मरम्मत का कार्य हो रहा है। जी
0: महान सर, आपने जिक्र की स्वामी जी की, स्वामी जी ने भी पवित्र गुफा में हाजिरी दी है, तो कितने भाग्यशाली हैं हम इस लिहाज से?
1: जी जी जी जी हाँ बिल्कुल। देखिए मैं तो आपको कहा कि ये यात्रा, ये जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कश्मीर है ये पूरा शुरू से ही प्रारंभ से ही शैव संप्रदाय की और शिव उपासकों की धरणी रही है। और जैसे ही इस यात्रा का समाचार, रजिस्ट्रेशन या अन्य व्यवस्थाओं के बारे में समाचार फरवरी, मार्च, अप्रैल में समाचार पत्रों में या और जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनसे ये शुरू होता है, तो जो शिव भक्त है देश और विदेश के, उनके हृदय में सफुर्णा होनी प्रारंभ हो जाती है। तो वो योजनाएं बनाना प्रारंभ कर देते हैं। और ये आज भी अनेकों जो शिव भक्त है पूरे देश ना बल्कि विदेश से भी, और जो महात्मा है, जो पुण्य आत्माएं हैं, जो और मैं ऐसे भी लोगों को सदग्रस्त और ऐसे महात्मा को जानता हूं जो 20-30 वर्षों से अगाध रूप से इस यात्रा को करते चले आ रहे हैं। वो तृप्त नहीं है, वो कहते हैं कि हम जाके शिव जी के दर्शन करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करें और अगले वर्ष हमें फिर बुलाएं। तो इस तरह से ये जैसे जैसे स्वामी विवेकानंद जी या प्रत्येक वर्ष आने वाले लोग हैं उनकी ये श्रद्धा और विश्वास का ये केंद्र है।
0: आपने इतिहास की बात की और बीच में आपने बात की ब्रिंगिश संहिता के बारे में।
1: जी जी।
0: तो ब्रिंगिश संहिता में अमरनाथ यात्रा का विस्तार से हमें वर्णन मिलता है और पुरानी कथा के अनुसार इसी पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा कही थी।
1: जी।
0: तो महंत जी, आपके नजदीक इस ग्रंथ की ऐतिहासिक और धार्मिक प्रासंगिकता क्या है और आज के युग में भगवान शिव की उस अमर कथा का मानव जीव के लिए क्या अर्थ है?
1: देखिए भगवान शिव जो है, जैसे हम सबसे पहले तो मैं आपको जो प्रश्न जो आपने आरंभ किया, जैसे मैंने कहा कि यह जो ग्रंथ है भृंगी संहिता
2: जी,
1: ये एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें जो भृंगी

0: मिश्रित है वो ना केवल उन्होंने इस कश्मीर के भूगोल इतिहास बल्कि इसकी संस्कृति पर भी प्रकाश डाला है। और इस उपयुक्त ग्रंथ की यह मौलिक देन है कि इसमें अमरेश, अमरेश्वर और अमना जी इन तीनों का उल्लेख है। और ये प्रासंगिक इसलिए है, ये जो ग्रंथ है इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि इनकी जो बातें कही गई हैं वो इनसे पूर्व भी जो ग्रंथ हैं जैसे आदि पुराण, नीलमत पुराण, उनमें भी उन्हीं चीजों का उल्लेख है। जैसे मैंने कहा कश्मीर और इस स्थान का जो परिचय है वो सातवें मन्वंतर में मिला। और दूसरा आपने जो पहलू था आपके प्रश्न का वो क्या, आज की प्रासंगिकता जो इस यात्रा की और
1: जी जी
0: शिव जी क्या है। शिव जी तो भोलेनाथ हैं, कहते हैं शिव जी के अनेकों नामों में से एक नाम आशुतोष भी है। आशुतोष का अर्थ है कि जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो भगवान शिव तो एक लोटा जल को ही चढ़ाता है पूरे भाव के साथ। संसार में सारी चीजें जो है वो विश्वास के साथ है। यदि कोई भक्त विश्वास के साथ श्रावण मास में या अन्यथा भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाता है भाव और श्रद्धा के साथ, तो भगवान आशुतोष का नाम ही वो है कि वो जो जल्दी, इसीलिए कहा गया है उनको कि वो आशुतोष हैं। और प्रासंगिकता जो है आप कहते हैं तो वो यह है कि जैसे ये भगवान शिव तीनों रूपों में है। जैसे इंग्लिश में एक शब्द है गॉड, तो वो जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। तो ये उत्पन्न करने वाले भी वही हैं, चलाने वाले भी, ऑपरेटर भी वही है और डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर भी वही है। तो इस तरह से भगवान शिव, और यह ना केवल अपनी स्थिरता में बल्कि अपनी चाल में भी भगवान शिव है। और शिव का अर्थ है मंगलमय, तो भगवान शिव स्वयं मंगलमय है। और हमारे जो ये संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति या जो हिंदू धर्म है, इसकी सबसे बड़ी सुंदरता वो मैं यह देखता हूं कि हमारे यहाँ ना केवल भगवान की पूजा की जाती है, यहाँ पर नदियों की, समुद्र की, नालों की, वनस्पति की, अन्न की, और जो पशु पक्षी हैं इनका भी पूजन, और इनके बिना किसी भेदभाव के, किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष के, सभी के मंगल की कामना की जाती है। इस संसार में जो भी है उस सबके मंगल की कामना करते हैं। तो जो इस संसार के अंदर जो भी रह रहे हैं या भारत में जितने भी धर्म यहाँ उत्पन्न हुए या बाहर से यहाँ आए, उनको भारतीय संस्कृति ने उपयुक्त स्थान दिया और उनको फलने फूलने का पूरा अवसर दिया, ये इस धर्म की महानता है।
2: जी श्रोताओं, ये थे हमारे साथी आमिर अशरफ मल्ला, छड़ी मुबारक के संरक्षक महंत देपेंद्र गिरी जी के साथ आपने इनकी बातचीत का पहला हिस्सा सुना। श्रोताओं, आपको बताते चले आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। प्रतिदिन आप तक ये प्रसारण पहुंचता है FM बालतल 103.7 MHz के अलावा FM पहलगाम 100.1 MHz पर। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों से आप हमें सुन पा रहे हैं। DTH की सर्विसेज, आकाशवाणी की YouTube आराधना चैनल और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म के अलावा न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर भी प्रतिदिन ये विशेष प्रसारण आप तक पहुंचता है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। श्रोताओ, अब आप कुछ ही क्षणों में सुनेंगे उर्दू में समाचार। समाचारों के उस पार इस विशेष प्रसारण में आप और भी बहुत कुछ सुनेंगे। सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं उमर मुख्तार। जम्मू कश्मीर के सोला जिला में निशानदेह किए गए भरपूश बालाई इलाकों और मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख में आज से मुर्दमशुमारी के सिलसिले में सेल्फ इन्यूमरेशन का आगाज हो रहा है। ये अमल 31 अगस्त तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस अमित शर्मा ने कहा कि इस अमल से निशानदेह किए गए इलाकों के बाशिंदों को डिजिटल मोड के जरिए अपने बारे में तफसीलात फराहम करने का मौका मिलेगा। जम्मू सूबे के पीर पंचाल खेते के पूंछ जिले में श्री बाबा बूढ़े अमरनाथ जी यात्रा का आज से बाजाबता आगाज हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह भगवती नगर जम्मू से यात्रियों के पहले काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सिलसिले में कल मुनक्किद हुई इफ्तिताई तकरीब से खताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यह यात्रा नज्म व ज़ब्त और यकजहती की अलामत है। उन्होंने यात्रियों से ताकीद की वो अपनी जिंदगी में धर्मा और सच्चाई का रास्ता इख्तियार करें। LG ने कहा कि भारत में मुख्तलिफ अकायद के लोग मिलजुल रहते हैं और कसरत में वहदत इस मुल्क का एक खासा है।
1: मैं मानता हूं कि बूढ़ा अमरनाथ जी के स्वरूप हमें यह शाश्वत सत्य दिखाई देता है कि जीवन तमाम विपरीत परिस्थितियों और विविधताओं के बीच संतुलन स्थापित करने और उनका सामंजस्य पूर्ण समन्वय करने की कला है। इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम केवल इस यात्रा के मार्ग पर ही नहीं चलेंगे बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे।
0: इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल जम्मू में एक तकरीब पर डोगरी गीत चिता के एल्बम की रस्म रोनमाई अंजाम दी। ये गीत नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के मौजू पर लिखा गया है। LG ने इस गीत के गुलकार हैप्पी जसरोटिया और हिदायतकार नीरज NJ को मुबारकबाद दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कोटरनिका राजौरी में पेश आए सड़क हादसे में इंसानी जानों के जियां पर रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने गमजदा खानदानों के साथ यकजहती और हमदर्दी जाहिर की है। वजीर आला ने जलंधर में पेश आए हादसे पर भी अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने मुतलका हुकाम को राजौरी हादसे में जख्मी हुए अफराद को बेहतर तिबी सहूलियात मुहैया रखने की हिदायत दी है। वाजिया रहे कि कोटरनिका में कल एक गाड़ी को उस वक्त हादसा पेश आया जब कंडी से मोहरा जा रही ये गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक खाई में जा गिरी। इस हादसे में दो अफराद अजान और चार दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए गामट मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया गया। मुल्क के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में भी आज हर घर तिरंगा मुहिम के तहत सरगर्मियां इख्तिताम को पहुंच रही हैं।

इस मुहिम के तहत यूटी के तमाम अजला में तिरंगा रैलियों और दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद हुबुल वतनी और कौमी यकजहती के जज्बे को फरोग देने के साथ साथ मुल्क की जदोजहद आज़ादी के सपूतों को खराज अकीदत अदा करना है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में नागहानी आफात के बाद बहालियाती अमल के लिए मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से मंजूर करदा 1579 करोड़ रुपए की माली पैकेज के तहत जारी कामों की तेजर अमल आवरी यकीनी बनाने पर जोर दिया है। श्रीनगर में मुतलिक अफसरों की एक मीटिंग के दौरान उन्होंने मुतलिक महकमों को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में प्रोजेक्ट मुरतब करे। आज बुलंद पाया वली हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमा का सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में ख्वाजा बाजार श्रीनगर में वाका खानकाह नक्शबंदिया पर दुरूद व अज़कार और खतमतुल मुअज़्ज़मात की मजालिस मुनाकिद हो रही हैं। खानकाह में ख्वाजा दिगर के नाम से मशहूर नमाज असर आज शाम 5:30 बजे अदा की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट इम्तिहान के लिए अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी पर्चों का दोबारा इम्तिहान लेने का ऐलान किया है। एजेंसी को इन पर्चों से मुतलिक कुछ शिकायत मौसूल हुई हैं। एनटीए के मुताबिक अंग्रेजी और कॉमर्स पर्चों का दोबारा इम्तिहान 9 सितंबर जबकि सोशियोलॉजी पर्चे का इम्तिहान 10 सितंबर को लिया जाएगा। वाजह रहे कि यूजीसी नेट का इम्तिहान इस बरस 22 से 30 जून तक लिया गया था। अवामी मसाइल पर मबनी हफ्तावार प्रोग्राम शहर शहर मंजर के लिए फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग आज और कल सुबह 10:30 से 12 बजे तक हो रही है। ख्वाहिशमंद अफराद अपने मसाइल रिकॉर्ड करवाने के लिए फ़ोन नंबर 01942452019 पर कॉल कर सकते हैं। और अब आखिर में रात के दर्ज हरारत पर एक नज़र। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 20 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।

अमरनाथ यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं बालतल एवं पहलगाम के अलावा डीटीएच यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल न्यूज ऑन एआर मोबाइल ऐप और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा और छड़ी मुबारक के साथ साथ जम्मू कश्मीर की इस पवित्र धरती पर एक और अत्यंत प्राचीन और पावन यात्रा संपन्न होती है जिसे बाबा बुद्धा अमरनाथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। ये पावन धाम जम्मू प्रांत के पूंछ जिले के राजपुरा मंडी इलाके में स्थित है। चट्टानी पहाड़ की गोद में पुलस्तिया नदी के तट पर विराजमान बाबा बुद्धा अमरनाथ का ये मंदिर सदियों से भक्तों की आत्मानिक श्रद्धा का केंद्र रहा है। श्रोताओं, आइए जानते हैं कि इस पावन स्थान के बुद्धा अमरनाथ कहलाने के पीछे की पौराणिक कथा। मान्यता है कि रावण के पिता महर्षि पुलस्त्य ने इस स्थान पर पुलस्त्या नदी के तट पर कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे। इसी वजह से इस स्थान को बुद्धा अमरनाथ कहा गया। एक अन्य प्राचीन मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को पवित्र अमरनाथ गुफा में अमर गाथा सुनाने जा रहे थे तब उन्होंने इस स्थान पर विश्राम किया था। इसलिए मान्यता है कि श्री अमरनाथ गुफा की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भक्त बाबा बुद्धा अमरनाथ के दर्शन नहीं कर लेते। बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ का प्राकृतिक शिवलिंग है। ये शिवलिंग किसी पत्थर या धातु का नहीं बल्कि एक स्वयंभू सफेद चट्टान का बना हुआ है जो आकार में अत्यंत अनूठा है। मंदिर के पास से बहने वाली पुलस्त्या नदी के पवित्र जल से भक्त शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और आज यानी कि श्रावण मास में विशेषकर श्रवण सोमवार और नागपंचमी के दिन यहाँ हजारों की संख्या में भक्त पहुँचे हैं और पूजा अर्चना करते हैं। श्रोताओं, आज से ही बुद्धा अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, आरंभ हुई है और श्री अमरनाथ जी यात्रा की तरह ही बाबा बुद्धा अमरनाथ यात्रा की भी एक विशेष छड़ी मुबारक होती है। ये पवित्र छड़ी मुबारक दशनमी अखाड़ा पूंछ से रवाना होती है। महंत जी की अध्यक्षता में साधु संतों और भक्तों के जटाजट बम बम बोले के जयकारों के साथ पैदल चलते हुए राजपुरा मंडी स्थित बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर पहुँचती है। रक्षाबंधन यानी श्रवण पूर्णिमा के दिन यहाँ भी विशेष मेला लगता है जहाँ पूरे देश से आए भक्त बाबा भोलेनाथ के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के साथ साथ जब अपने आखिरी पड़ाव पे श्री अमरनाथ जी यात्रा होती है तो श्री बुद्धा अमरनाथ की यात्रा भी चलती है और ये दोनों ही यात्राएं जो हैं श्रवण पूर्णिमा पर ही अपने समापन को पहुंचती हैं। जी श्रोताओं, आइए अब आपको गायत्री मंत्र सुनवाते हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें डीटीएच की सर्विस, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं फिल्म बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा फिल्म पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप देश के विभिन्न भागों से हमें सुन पा रहे हैं यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल, डीटीएच की सर्विस, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म तथा न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, प्रतिदिन आप तक ये विशेष प्रसारण पहुंचता है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। श्रोताओं, आज नाग पंचमी का पावन पर्व है और नाग पंचमी का पर्व सनातन परंपरा में प्रकृति, जीव जंतुओं और देव शक्तियों के प्रति आदर व्यक्त करने का एक अनूठा पर्व है। पुराणों में कथा आती है कि जब समुद्र मंथन के समय विशाल हलहल विष निकला, तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। विष की जलन को कम करने के लिए देवताओं और भक्तों के साथ साथ नाग देवताओं ने भी महादेव का साथ दिया। भगवान शिव ने वसुकी नाग को अपने गले में आभूषण के रूप में धारण करके नाग जाति को परम आदर प्रदान किया। इसी कारण आज यानी नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के साथ साथ अष्टनागों, वसुकी, तक्षक, अनंता और कर्तोक जैसे दिव्य नागों की पूजा का विधान है। मान्यता है कि आज के दिन नाग देवता की पूजा करने से परिवार में अभय, सर्प भय से मुक्ति और मन की शांति प्राप्त होती है। श्रोताओं, हमारी इस कश्मीर घाटी का नाग परंपरा से अत्यंत प्राचीन और गहरा संबंध रहा है। प्राचीन ग्रंथ नीलामत पुराण के अनुसार कश्मीर की ये पावन भूमि सदियों पहले नागों की भूमि मानी जाती थी। घाटी के प्रसिद्ध स्थान जैसे अनंतनाग, वेरीनाग, कौंसरनाग और मटन आज भी इस प्राचीन आत्मिक परंपरा के साक्षी हैं। श्रीनगर के हारी पर्वत और शंकराचार्य पर्वत से लेकर घाटी के आसपास के समस्त इलाकों में आज के दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्त सुबह से ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल, बेलपत्र और फूल अर्पित करके सृष्टि की समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। श्रोताओ, नाग पंचमी के इस पावन पर्व पर आकाशवाणी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और नाग देवता आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। आइए कुछ भजन सुनते हैं।

श्यामाना जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं डीटीएच की विभिन्न सर्विसेज, यूट्यूब की आकाशवाणी आराधना चैनल और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के अलावा न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप पर भी। श्रोताओं 12 बजने वाले हैं, चंद ही लम्हों में हम आपको लिए चल रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप समाचार सुनेंगे। समाचारों का जरा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम विशेष व्यवस्था के साथ और देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने आज बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित

श्रोताओं, जैसे कि हमने आपको बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में कभी भी वर्षा होती है और वर्षा की वजह से यात्रा ट्रैक्स पर मरम्मत करनी बाकी थी और इस वजह से 9 अगस्त से ही यात्रा स्थगित की गई और प्रशासन ने ये फैसला लिया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि फिलहाल अब किसी भी तीर्थयात्री को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, पर छड़ी मुबारक की पद यात्रा और छड़ी मुबारक की पूजन वगैरह अपने स्केड्यूल के हिसाब से बिल्कुल टाइम पर जारी है। और आज नागपंचमी के मौके पर दशमी अखाड़ा में छड़ी मुबारक की पूजा के बाद उन्हें भक्तों के लिए दर्शन के लिए रखा गया है और 22 अगस्त को छड़ी मुबारक की पद यात्रा शुरू होगी और पहलगाम के पारंपरिक मार्ग से होते हुए छड़ी मुबारक 28 अगस्त को पवित्र गुफा मंदिर पहुंचेगी, जहां पूजा अर्चना और विसर्जन के साथ साथ श्रवण पूर्णिमा पे, जो कि रक्षाबंधन के आसपास आता है, उसी दिन इस यात्रा का समापन होगा। श्रोताओं, आइए भजन सुनते हैं।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपकी उद्घोष का शाहिना ऋषि, आपकी सेवा में रहूंगी शाम 6 बजे तक। आपको बता दें, आप इस विशेष प्रसारण को समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, कुछ ही देर में हम आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग समन्वय के लिए जन केंद्रित और मनुष्यता प्रथम दृष्टिकोण से प्रेरित सामूहिक प्रयासों के केंद्र में आम लोगों को रखा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलीला ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में कहा कि भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद बताया कि ये समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
1: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही आगे न बढ़ाए। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्र थी। भगदड़ अशोक धाम स्टेशन से मंदिर तक के रास्ते में बिजली के खंभे में करंट आने की अफवाह से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। पूर्वी इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। बचाव दलों ने कल 6 और शव बरामद किए। 135 लोगों के घायल होने की सूचना है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The government will soon constitute a high-powered committee on banking in achieving the vision.

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। FM पहलगाम 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर DTH की आराधना सर्विस एवं निम्बस ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं और हम उपस्थित रहते हैं प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक आपकी सेवा में। जी हाँ श्रोता, आपको बताना चाहेंगे कि वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आने वाले भक्तों के लिए यात्रा का सिलसिला जो है आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। जैसे कि ये भी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि पहलगाम के प्राचीन मार्ग को 19 जुलाई ही सड़क के मरम्मत के कारण बंद कर दिया गया था यात्रा के लिए, और इसी तरह जो बालतल का मार्ग है उसको 9 अगस्त से बंद कर दिया गया था यात्रा के लिए। वहाँ पर भी मरम्मत सड़क की हो रही थी और अब इस यात्रा को इसलिए भी बंद कर दिया गया क्योंकि इस मार्ग पर जो है छड़ी मुबारक की यात्रा होगी। जी हाँ, अमरनाथ यात्रा के आखिरी पड़ाव पर छड़ी मुबारक एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण प्रतीक है। शुद्ध शटिका के संरक्ष जो है महंत दीपेंद्र गिरी जी इस छड़ी मुबारक की यात्रा का नियमित रूप से श्रीनगर के दशना में अखाड़े से आरंभ हुआ। जी हाँ, 12 अगस्त को छड़ी मुबारक का आरंभ हुआ। ये परंपरा कहती है कि 19वीं शताब्दी के आगाज के साथ ही शुरू हुई थी। छड़ी मुबारक को श्रीनगर के दशना में अखाड़ा मंदिर में रखा जाता है। इसको पहले श्रीनगर से पहलगाम लिया जाता है, फिर चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी होकर अमरनाथ गुफा तक पहुँचती है। ये छड़ी जो है भगवान शिव जी का प्रतीक मानी जाती है। छड़ी मुबारक के साथ यात्रा करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। ये परंपरा अमरनाथ यात्रा को एक विशेष आध्यात्मिक महत्व देती है। हर वर्ष बहुत से साधु का एक समूह छड़ी मुबारक के साथ यात्रा करते हैं। ये न सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है बल्कि कश्मीर की संस्कृति विरासत का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओ, आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई को शुरू हुई थी, अब अपने समापन की ओर बढ़ रही है। इस पवित्र यात्रा ने हजारों लाखों भक्तों को श्री अमरनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य दिया। जी हाँ श्रोताओ, अब यात्रा के इन चरणों में 12 अगस्त से जो है एक नया अध्याय शुरू हुआ पवित्र छड़ी मुबारक का, जो कि यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक है। जी हाँ, अब जो ये यात्रा है अपनी यात्रा पर, अब ये छड़ी मुबारक जो है अपनी यात्रा पर निकल चुकी है। अब इस छड़ी मुबारक को विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाएगा, जहाँ इसके समान में विशेष पूजा और अर्चना की जाएगी। ये अति प्राचीन कालीन परंपरा है जो अमरनाथ यात्रा के आध्यात्मिक महत्व को और भी बढ़ा देती है। जी हाँ श्रोताओ, अब इन पूजा अर्चनों के बाद छड़ी मुबारक को अंतिम लक्ष्य पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर ले जाया जाएगा। ये यात्रा न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिरूप करती है। हम इस यात्रा से जुड़े पूरे समूह से अनुरोध करते हैं कि वो इस पवित्र यात्रा के अंतिम चरण में भी अपनी श्रद्धा और भक्ति बनाए रखें। साथ ही हम उनसे ये भी अनुरोध करते हैं कि वो स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, ताकि ये यात्रा जो है सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग, जहां श्रोताओं कुछ देर में हम आपको एक बार फिर आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में समाचार समाप्त करेंगे। बस जरा सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि हुकूमत बैंकिंग इसलाहत और विकसित भारत की खातिर सरकारी सेक्टर के बैंकों के मुस्तकबिल के लाए अमल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देगी। भारत ने अपनी सदारत के दौरान ब्रिक्स ताउन के लिए अवाम पर मरकूज और इंसानियत को मुकदम रखने के वाले नुक्ते नजर का इरादा किया है। बिहार में अशोक धाम मंदिर में भगदड़ के एक वाके में 7 खवातीन की मौत हो गई, जबकि मगरबी बंगाल के बीरभूम में आग लगने के वाके में 5 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल और उड़ीसा में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भारत के MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। हुकूमत विकसित भारत के हुसूल में बैंकारी से मुतालिक एक आला इख्तियाराती कमेटी जल्द ही तश्कील देगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने यह बात आज नई दिल्ली में सरकारी सेक्टर के बैंकों के दो रोजा कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करने के बाद कही। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि मजकूरा कमेटी मसाइल और सिफारिशात पर गौर करके बैंकारी इसलाहत के बारे में मुस्तकबिल के लायअमल का फैसला करेगी। मोहतरमा सीतारमन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि बातचीत के नतीजे कमेटी के लिए काफी मददगार साबित होंगे, क्योंकि वो बैंकों के मुस्तकबिल के रोल से मुतालिक अपनी सिफारिशात वजा करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक मुस्तहकम हालत में है, क्योंकि फंसे हुए असासे अब तक की सबसे निचली सतह पर हैं। वजीर मौसूफ ने इस यकीन का इजहार किया कि आला इख्तियाराती कमेटी की जानिब से सिफारिशात पेश किए जाने के बाद हुकूमत और बैंकारी का शोबा भारत की इक्तसादी तरक्की में तेजी लाने के लिए आगे बढ़ेंगे। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत के सेक्रेटरी तन्मय कुमार ने कहा कि गुज़श्ता 2 दहाइयों में ब्रिक्स इत्तेहाद इक्तसादी मुज़ाकरात से आगे बढ़कर माहौलियात को दरपेश बड़े चैलेंजों से मुतालिक नजरिया अपनाने के लिए एक बासर प्लेटफॉर्म बन गया है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में आबोहवा की तब्दीली और पायदार तरक्की से मुतालिक माहौलियात की वर्किंग ग्रुप और राबता ग्रुप के सीनियर अफसरों की मीटिंग की सदारत करते हुए कही। मीटिंग के दौरान उन्होंने बताया कि ब्रिक्स 2026 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस विजन से रहनुमाई हासिल हुई है कि आलमी इश्तराक को इंसानों की फलाह बहबूद पर मबनी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की सदारत के दौरान आबोहवा की तब्दीली और पायदार तरक्की से मुतालिक माहौलियात के वर्किंग ग्रुप और राबता ग्रुप एक साथ मिलकर 4 तरजीही शोबों के इश्तराक में इजाफा हुआ है। ये शोबे हैं पायदार तर्ज जिंदगी को फरोग दिया जाना, शजरकारी, जंगल की आग और आफात से निमटना और सर्कुलर मईशत। इस मीटिंग में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, इस्लामी जमहूरिया ईरान, रूसी विफाक, जमहूरी जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब अमारात समेत ब्रिक्स के रुकन ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। वजारत खारजा में इक्तसादी तालुकात के सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने आज कहा कि भारत ने अपनी ब्रिक्स सदारत के दौरान अवाम पर मरकूज और इंसानियत को मुकदम रखने वाले नुक्ते नजर के तहत लोगों को ब्रिक्स ताउन की इज्तमाही कोशिशों के मरकज में रखा है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम 2026 से खिताब करते हुए कहा कि भारत की सदारत के दौरान मुख्तलिफ शहरों में 350 से ज्यादा इजलास मुनक्किद किए जा चुके हैं, जिनसे मुख्तलिफ शोबों में अहम नतज बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स उभरती हुई मईशतों के बढ़ते हुए इकतसादी विजन और इज्तमाही आवाज की अक्कासी करता है। भारत ब्रिक्स को बातचीत और तरक्की के लिए एक तामीरी प्लेटफॉर्म तस्वर करता है, जो कसीर जहती निजाम की तकमील करता है। आइंदा मर्दमशुमारी के खातिर आबादी के इंदराज की तैयारी के हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर के बर्फानी इलाकों में डिजिटल वसीले से जाती तफसीलात से मुतालिक फॉर्म भरने का अमल आज से शुरू हो गया है और ये इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जाती मालूमात से मुतालिक फॉर्म भरने की सहूलत जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों में वाके 1115 गाँवों और 3 म्यूनिसपल्टियों के बाशिंदों के लिए दस्तियाब होगी। इन इलाकों के अफराद डिजिटल वसीले से खुद से जाती मालूमात से मुतालिक फॉर्म भरकर अपनी तफसीलात दर्ज करा सकेंगे। इन इलाकों में वाके म्यूनिसपल्टियों में उरी, गुलमर्ग और किश्तवाड़ शामिल हैं। इस अमल के दौरान तकरीबन 40 सवालात पूछे जाएंगे, जिनमें लोगों की मुकम्मल मालूमात, बच्चों की तादाद, पेशा और दीगर उमूर शामिल होंगे। इस फॉर्म में जाती से मुतालिक मालूमात भी शामिल की गई है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के लिए तकरीबन 40 जुमरों को नोटिफाई करके शाये किया गया है। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: यह खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बिहार के लखीसराय जिले में सावन के पवित्र महीने के तीसरे पीर को आज अशोक धाम मंदिर में भक्तड़ के एक वाके में 7 खातून अकीदतमंदों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद जलाभिषेक के लिए जमा हुई थी। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि भगदड़ का ये वाकया आज सुबह अशोकधाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर पेश आया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक भगदड़ इस अफवाह के बाद हुई कि गिरे हुए बिजली के एक खंभे से करंट आ रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लखीसराय में भगदड़ के सबब होने वाले जान नुकसान पर दुख का इजहार किया है। वजीर आजम ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। जरा मोदी ने यकीन दिलाया कि मकामी इंतजामिया मुतासरा लोगों की मदद कर रही है। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने महलुकीन के करीबी रिश्तेदारों को 4-4 लाख रुपए की नकद इमदाद देने का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के करीब एक होटल में आज सुबह सवेरे आग लगने से कम 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि कई दीगर अफराद जख्मी हो गए। इत्तला के मुताबिक आग सबसे पहले होटल के इस्तकबालिया में लगी और तेजी से 4 मंजिला इमारत में फैल गई। आग लगने के वक्त ज्यादातर मेहमान सो रहे थे। बीजेपी ने आज कांग्रेस की सीनियर रहनुमा पी चिदम्बरम के उस बयान की सख्त नुक्ताचीनी की है जिसमें उन्होंने खुद को दिफाई नक्सल कहलाने पर फख्र का इजहार किया था। नई दिल्ली में साफियों से गुफ्तगू करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमतें जिस नक्सलिज्म को खत्म करने में नाकाम रही थीं, उस पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मौसर तौर पर काबू पा लिया है। उन्होंने साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के 13 अप्रैल 2006 के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने नक्सली खतरे को मुल्क के दाखिली सलामती के लिए तारीख का सबसे बड़ा खतरा करार दिया था।
2: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: भारतीय फौज का दस्ता आज थाईलैंड के लिए रवाना हो गया जहां वो भारत और थाईलैंड के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क मैत्री के 15वें एडिशन में हिस्सा लेगा। ये मश्क कल शुरू होगी और 31 अगस्त को अख्ताम पजीर होगी। अमेरिका के हवाई में लाला नाम का तूफानी बादोबारा आने के बाद मिट्टी के तोदे गिरने और अचानक सैलाब आ जाने के सबब एक शख्स कार हादसे में हलाक हो गया और 100 से ज्यादा इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल और उड़ीसा के इलाकों में आज इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में MR अर्जुन और हरिहरन पर मुश्तमिल भारतीय जोड़ी मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। दोनों दूसरे मैच में 6-4 से सबकत बनाए हुए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि हुकूमत बैंकिंग इस्लाहात और विकसित भारत की खातिर सरकारी सेक्टर के बैंकों के मुस्तकबिल के लाए अमल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देगी। भारत ने अपनी सदारत के दौरान ब्रिक्स ताउन के लिए अवाम पर मरकूज और इंसानियत को मुकदम रखने वाले नुक्ते नजर का इयादा किया है। बिहार में अशोकधाम मंदिर में भक्तड़ के वाके में 7 खवातीन की मौत हो गई, जबकि मगरबी बंगाल के बीरभूम में आग लगने के वाके में 5 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल और उड़ीसा में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भारत के MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Government to constitute high-level committee to review banking reforms and future course of public sector banks towards Vikasit Bharat. India reaffirms people-centric, humanity-first approach to BRICS collaboration during its chairship. 7 women died in stampede at Ashok Dham Temple in Bihar. 5 people killed in fire incident in Birbhum, West Bengal. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall in Gangetic, West Bengal and Odisha today. In men's cricket, Sri Lanka were 167 for 5 in their first innings against India on day 3 of opening test at Galle. And BWF Badminton World Championships begin in New Delhi, India's

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 30वें दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन, हरिहरन, सकरून पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे।

0: अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्य दिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well researched
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
1: And in that, the role of banks.
0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
2: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने चार प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के तीन आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
3: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
4: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो उसका क्यों था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
3: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4,4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
5: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा ये कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
6: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शेषर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त

0: यात्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिककाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और नौवीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के अम्स्टरफेंड में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेब OTT प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें सुन रहे हैं। जय श्रोताओ, हम आपको अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष छड़ी मुबारक के कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है प्रदान करना चाहेंगे। छड़ी मुबारक को दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से 12 अगस्त प्रातः शंकराचार्य मंदिर रवाना कर दिया गया और 12 अगस्त शाम को पारंपरिक पूजा के बाद अपने स्थान पर वापस ले जाया गया। ऐसे ही 3 अगस्त को पवित्र छड़ी मुबारक को दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से शारिका भवानी मंदिर श्रीनगर ले जाया गया और वहां प्रणाम करने के बाद शाम को वापस अपने स्थान पर ले जाया गया। छड़ी स्थापना, ध्वजारोहण और तृतीया समारोह दशनामे अखाड़ा में 15 अगस्त को आयोजित हुए। तो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज 17 अगस्त सोमवार 2026 को नाग पंचमी के शुभ अवसर पर श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी जो है, इस शुभ अवसर के इस जो है आज रूप में मनाया जाता है। दशनामी अखाड़ा में छड़ी पूजन का महत्वपूर्ण अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा 4:15 पर। ये पूजन छड़ी मुबारक यात्रा का एक अहम कदम है जो इस पवित्र यात्रा को और भी आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। नाग पंचमी का ये दिन इस अनुष्ठान के लिए विशेष रूप से चुना गया है क्योंकि इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। अभी दशनामी अखाड़े में छड़ी मुबारक जो है, इस पूजा के बाद छड़ी मुबारक को दर्शन का अवसर श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध किया जाएगा। आपको हम बता दें कि हर रोज जो है 11 से 12 बजे तक, सुबह 11 से 12 बजे तक और शाम 6 से 7 बजे तक भक्त यहाँ आकर इस पवित्र छड़ी मुबारक का दर्शन कर सकते हैं। ये दर्शन सुविधा तब तक जारी रहेगी जब तक छड़ी मुबारक अपनी यात्रा के लिए श्रीनगर से प्रस्थान नहीं करती। ये दर्शन का अवसर जो है भक्तों के लिए एक अद्भुत अनुभव होता है जो उन्हें श्री अमरनाथ जी के साथ आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है। छड़ी मुबारक की यात्रा का आगाज जो है 22 अगस्त 2026 को होगा। पवित्र सफर श्रीनगर दशनामी अखाड़ा से पहलगाम के लिए। जी हाँ, आगे हम यही कहना चाहेंगे कि 22 अगस्त को पवित्र छड़ी मुबारक वार्षिक यात्रा के लिए पहलगाम 2 रात विश्राम के लिए रवाना होगी और रास्ते में जो है सुरेश्वर मंदिर श्रीनगर, शिव मंदिर पांपोर, शिव मंदिर बिजभाड़ा, सूर्या मंदिर मटन, मार्तन सूर्या मंदिर मटन, दरिया लदर के किनारे पर गणेश लदर, गणेश बल और गौरी शंकर मंदिर पहलगाम में प्रणाम करेगी। 22 और 23 अगस्त को पहलगाम में विश्राम करेगी। 23 अगस्त को पहलगाम में भी पूजा होगी। 24 अगस्त को छड़ी मुबारक दोपहर 3 बजे पहलगाम से चंदनवाड़ी रात के विश्राम के लिए रवाना होगी। 25 अगस्त को छड़ी मुबारक सुबह शेषनाग रात के विश्राम के लिए रवाना होगी। शेषनाग में 1 रात विश्राम के बाद छड़ी मुबारक को 26 अगस्त की सुबह पंचतरणी के लिए रवाना होगी जो गुफा मंदिर के रास्ते का अंतिम विश्राम स्थल होगा। 26 अगस्त की रात्रि और 27 अगस्त को भी छड़ी मुबारक का पंचतरणी में रात्रि का विश्राम रहेगा। इस द्वारा साधु संत अगले दिन होने वाले पवित्र दर्शन के लिए तैयारी करेंगे और फिर आएगा 28 अगस्त का वो पवित्र दिन जब श्रावण मास के अवसर पर छड़ी मुबारक सुबह के समय पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेगी। परंपरा के अनुसार ही गुफा में सूर्य उदय के समय विशेष पूजन और दर्शन किए जाएंगे। इसके साथ जो है श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा अपने चरम बिंदु पर पहुंचेगी। और भी जानकारी देंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026।

0: कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, जैसे कि हमने कहा, श्री अमरनाथ जी यात्रा का एक महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा जो है छड़ी मुबारक का सफर शुरू हो गया है, आरंभ हो गया है 12 अगस्त को। जी हाँ, छड़ी मुबारक जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा का एक प्रमुख प्रतीक है, अभी श्रीनगर के दशनामी अखाड़े में स्थापित है। तो हमारे साथी आमिर अशरफ ने महंत दीपेंद्र गिरी जी के साथ बात की है इस कार्य के बारे में, छड़ी मुबारक के कार्य के बारे में। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं महंत जी।
1: मान जी, छड़ी मुबारक की यात्रा को लेके अगर हम कहें कि शुरुआती चरण में भूमि पूजन चंद रोज पहले जब पहलगाम में या विभिन्न मंदिरों में हुआ, तो धार्मिक और पारंपरिक तौर पर उसी से हम माने कि छड़ी मुबारक की ये यात्रा जो है वो शुरू हो गई। लेकिन आपकी जुबान से, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस यात्रा का अगला शेड्यूल क्या रहेगा और किन किन पड़ावों से होती हुई ये यात्रा पवित्र गुफा तक पहुंचेगी।
2: जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त को श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया थी और शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं को हमने श्री अमरेश्वर मंदिर, जो कि दशनामी अखाड़ा के अंदर स्थित है, वहां पर स्थापित किया। अब कल सोमवार, जो कि नाग पंचमी का दिन है, तो नाग पंचमी को मुख्य पूजन किया जाएगा और उसके पश्चात 22 अगस्त, जो कि दशमी का दिन है, हम यात्रा के मुख्य यात्रा के लिए हम यहां से प्रस्थान करेंगे। सबसे पहले, शायद आप यहीं से हैं तो आपको जानकारी होगी, ये जो पूजन है नाग पंचमी का, जो कि कल सायंकाल 5 बजे होगा, तो ये आज के दिन यानी कि कल के दिन, ये नाग पंचमी के दिन यहाँ पर 25,000 से 30,000 लोग यहाँ से लेकर मुख्य हमारे द्वार से, अखाड़े के द्वार से लेकर दुर्गा नाग तक, सड़क के दाएं और बाएं दोनों तरफ हर कम्युनिटी के लोग छड़ी को देखने के लिए, महात्माओं का जो वो पद यात्रा है वो देखने के लिए खड़े होते थे दुर्गा नाग तक। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, आपको संभवतः जानकारी भी होगी, कि नाग पंचमी के दिन पूजन करने के तुरंत बाद महात्मा शटिकाओं को लेकर मुख्य यात्रा के लिए पैदल ही प्रस्थान करते थे। तो पहला पड़ाव पंचमी का पंपुर में, षष्ठी की रात्रि बिजबहाड़ा, सप्तमी की रात्रि अनंतनाग गौतम नाग होते हुए अनंतनाग, अष्टमी की रात्रि मार्तंड, नवमी की रात्रि अश्मकाम, दशमी और एकादशी पहलगांव, द्वादशी की रात्रि चंदनवाड़ी, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग, चतुर्दशी की रात्रि पंचतरणी और अंततः श्रावण पूर्णिमा, इंटरवीनिंग नाइट। मैंने वो यात्रा की है जब हम रात को 11:30-12 बजे ही पंचतरणी से प्रस्थान कर देते थे, क्योंकि पूर्व समय में ऐसा ही लोगों का विश्वास और ऐसी ही व्यवस्थाएं थी कि सभी छड़ी मुबारक के साथ ही जाके दर्शन किया करते थे और छड़ी सब आगे लीड करती थी और महात्मा जैसे 4 बजे के करीब प्रत्येक पड़ाव से आगे प्रस्थान करते थे दूसरे पड़ाव के लिए और उसके बाद यात्रियों को छोड़ा जाता था। तो आज भी उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए, जिसमें से कम क्या हुआ, जो रात्रि पड़ाव है तो हम पंचमी के दिन पूजन करेंगे, कल पूजन करेंगे, उसके उपरांत 22 तारीख को दशमी के दिन उन सभी स्थानों पर जहां हम रात्रि पड़ाव किया करते थे वहां पर सभी स्थानों पर रुककर सांकेतिक पूजन किया जाएगा। मार्तंड में भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसपास के जो गांव में रहते हैं, आज भी रहते हैं, वो सब आते हैं, दर्शन करते हैं। उसके पश्चात सायंकाल हम पहुंच जाएंगे पहलगांव के पास गणेश बल में, नदी के उस पार, लिद्दर के उस पार जाके पूजन होगा। उसके पश्चात हम छड़ी विश्राम स्थल में छड़ी मुबारक को स्थापित कर दिया जाएगा। तो दशमी की रात्रि यानी कि 22 तारीख और 23 तारीख, जो कि हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको बताया, दशमी और एकादशी को पहलगांव में और 24 तारीख को हम रहेंगे चंदनवाड़ी, 25 तारीख रात्रि शेषनाग में, 26 और 27, क्योंकि इस बार थोड़ी सी तिथियों में भिन्नता है, पूर्णिमा को ही उस प्राकृतिक रूप से बनने वाले हिमलिंग या शिवलिंग का दर्शन करने का महात्म्य बताया गया है। तो उस पवित्र गुफा में जहां आज भी भगवान शिव हिमलिंग के रूप में विद्यमान रहते हैं, इस पवित्र छड़ी मुबारक

0: को हम वहां ले जाएंगे और वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन करेंगे और पूजन अर्चन करने के पश्चात श्रावण पूर्णिमा की रात्रि 28 अगस्त की रात्रि हम वापस रात्रि पड़ाव करेंगे पंचतरणी में। 29 तारीख प्रातःकाल पंचतरणी से चलकर उसी मार्ग से तो वापस हम पहुंचेंगे पहलगांव। 29 की रात्रि पहलगांव में विश्राम होगा। 30 तारीख को प्रातःकाल लिद्दर नदी के किनारे पहलगांव में पूजन विसर्जन होगा, उसके पश्चात महात्माओं का भोज और इसके साथ ही इस वर्ष की छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की जो यात्रा है वह पूर्ण होगी।
1: मान सर, हमें याद आ रहा है कि इस बारे में अगर आप हमारे श्रोताओं को बता दें, हमारे भक्तों को बता दें कि क्या 17 तारीख को जब ये नाग पंचमी मुकम्मल होगी तो उसके बाद 22 तारीख तक छड़ी मुबारक जो है वो भक्तों के दर्शन के लिए खुली रहेगी?
0: जी, हम ऐसी व्यवस्था बनाई है, क्योंकि एक तो दिन काफी लंबा होता है तो प्रातःकाल ही लोग होते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि कल मैंने एक विज्ञप्ति में भी कहा कि आप बताएं सभी को, सो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक दिन के समय और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक कोई भी दर्शनार्थी शटिकाओं के दर्शन करना चाहता है बिना स्पर्श किए वो उसका स्वागत है।
1: अच्छा महंत सर, एक और सवाल मेरा, कश्मीर में दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं तो पवित्र छड़ी को मोहब्बत और एहतराम से लोग जो है छड़ी मुबारक कहते हैं, तो महंत सर छड़ी मुबारक में मुबारक शब्द का इस्तेमाल कश्मीर की मिलीजुली भाषा या तहजीब और भाईचारे की कौन सी तस्वीर दिखाता है और जो सदियों से यहाँ के लोगों को एक दूसरे से जुड़े हुए हैं?
0: सभी की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। मैंने आपको यह भी बताना चाहूंगा, जब मैंने बड़े महान जी के सानिध्य में यात्रा प्रथम बार किया तो मैंने स्वयं अपनी आंखों से ये देखा कि हिंदू, मतलब ये यात्रा हिंदू कश्मीरी पंडित या हिंदू तो आएगा ही वहां, लेकिन दूसरे संप्रदाय के लोग भी वहां पर आकर छड़ी मुबारक को, जैसे हम लोग जाते हैं तो घर से कोई मौली रक्षा सूत्र छड़ी पे बांधते हैं और कोई मनोकामना हम करते हैं कि मैं ऐसी मेरे व्यवस्था है, ऐसा शिव जी की कृपा से ऐसा हो जाए, कामना करते हैं। ऐसे ही मैंने दूसरे संप्रदाय के लोगों को भी, उनको मौली का पता नहीं है कि रक्षा सूत्र क्या होता है, तो मैंने महिलाओं को अपनी चुन्नी की कतरन अपीयरेंस है, उनके चेहरे के भाव ही बता रहे हैं कि उनकी भी इसमें आस्था है। तो
1: जी
0: 96 तक ये यात्रा जम्मू से चलती रही और जम्मू ही जाके ये कल्मिनेट होती थी, इसका समापन होता था। उस दौरान मैंने जम्मू में भी देखा तो जम्मू के लोगों को धीरे धीरे पता चला, लेकिन यहाँ पर जो वाद्य यंत्र हैं साधुओं के, चाहे शंख हो चाहे वो दूसरी दुर्भंगी होती है, जैसे ही बजती है तो कश्मीरी जो है वो तुरंत पलट के देखता है और उसको ये आभास होता है, उसको ये पता होता है कि ये छड़ी मुबारक या महात्मा किसी ने बजाया है। तो ये इस यात्रा की ये भी एक सुंदरता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम ने इस यात्रा को हमेशा से ताबून दिया है। और एक ये भी हम जानते हैं कि दुर्भाग्यवश बीच बीच में ऐसी घटनाएं हुई जहां ये भाईचारे को प्रयास किया गया कि इसको क्षति पहुंचे, लेकिन ये चूंकि हमारी, इसको कहते हैं कि हमने डाइजेस्ट किया, हमारे ये संस्कारों में हमारे खून के अंदर दौड़ रही हैं चीजें, तो जो काफी उम्र के लोग हैं, आज बच्चों को शायद उतना नहीं पता जो 90 या 95 के बाद जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जो पुरानी जनरेशन है वो आज भी इस यात्रा का, छड़ी से जुड़े हुए महात्माओं का और छड़ी का एहतराम करते हैं।
1: अमरनाथ यात्रा के पारंपरिक स्थानों जैसे पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी, इनका पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है और इन पड़ावों से गुजरते हुए यात्रा का असली संदेश यात्रियों को किस रूप में प्राप्त होता है? मुख्तसरन
0: जी, जी सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये जो यात्रा है, क्योंकि ये तीर्थ यात्रा है और ये एक मास से की ही यात्रा हुआ करती थी, आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर श्रावण पूर्णिमा तक, जो कि जैसे कि इस वर्ष हम 29 जुलाई को पहलगांव में जाके हमने भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, ध्वजारोहण किया, ये अनुष्ठान वो हैं जो इस यात्रा को प्रारंभ करने के साथ जुड़े हुए हैं। तो उस

0: उसके बाद फिर हम जैसे ये सारे पूजन हम करते हैं, ये एक व्यवस्था में है कि हम अमावस्या के दिन शंकराचार्य देवी शंकराचार्य के जी के दर्शन करते हैं, वहां जाके प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम प्रतिपदा अगले दिन जाकर हरि पर्वत से शारिका भवानी मंदिर में जाके करते हैं तृतीया को स्थापना, उसके पश्चात पंचमी के दिन पूजन, और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया हम पड़ाव करते हुए निकला करते थे, क्योंकि एक दिन में इतना सफर, ये श्रीनगर अखाड़ा से लेकर पवित्र गुफा तक का जो सफर है वो 148 किलोमीटर का सफर है, तो ये चूंकि हम जैसे जैसे ऊपर चलते हैं 5000 या 5500 फीट समुद्र तल से ऊंचे हम इस समय श्रीनगर में बैठे हुए हैं, तो जैसे जैसे हम पहलगांव पहुंचते हैं तो पहलगांव लगभग 7000 फीट से ऊंचा ऊंचाई पर वो स्थित है, जो उसके बाद चंदनवाड़ी है वो शायद 8500-9000 है, वो शायद शेषनाग और ऊंचा, तो ये एक एक पड़ाव करते हुए ना केवल इसका स्थानों का महत्व है बल्कि ये साइंटिफिकली भी अप्रोप्रिएट है, क्योंकि धीरे धीरे तीर्थयात्री हाइट गेन करता है। मुझे स्मरण है कि आज तो जिस समय हम जाएंगे बड़ी सीमित संख्या में होंगे और इस बार तो पता नहीं कितने लोग होंगे, लेकिन उस समय की बात जब हालात अच्छे थे, सारी व्यवस्थाएं जैसे पैदल हम चलते थे, तो छड़ी के साथ 15,000 से 20,000 लोग हुआ करते थे, तब भी हुआते थे, तो वो सारे उनकी रहने की व्यवस्था, कोई समुद्र तल के से आया है, कोई चेन्नई से आया है, कोई बॉम्बे से आया है, कोई कहीं से आया है, तो धीरे धीरे वो हाइट गेन करते थे। तो वो पड़ावों का तो मैंने आपको सबसे पहले वो पड़ाव बताए कि चंदनवाड़ी में भगवान शिव ने चंद्र का विसर्जन किया, उसके पश्चात शेषनाग में शेषनाग का विसर्जन किया, और वहां की जो जो ऊर्जा है वो बिल्कुल अद्भुत है। कई बार ऐसा मुझे स्मरण है, एक बार कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर थे उनका परिवार मेरे साथ था जो यात्रा में, उसी साल जिस साल नेचुरल कैलमिटी हुई, तो उनमें से कुछ लोग मेरे साथ जब हम शेषनाग जाते हैं, सामान्य तीर्थयात्री चंदनवाड़ी से शेषनाग जाता है, सीधा शेषनाग कैंप में जाके रुकता है, क्योंकि वो भी लगभग 16 किलोमीटर का सफर है और थक जाता है, तो हम लोग लेकिन नीचे परंपरागत जाकर झील तक जाते हैं, वहां पूजन होता है, कोई महात्मा स्नान भी करते हैं, तो वो मुझे स्मरण आ रहा है कि जब हम आरती कर रहे थे, वहां पूजन कर रहा था, मंत्रोच्चारण हो रहा था, तो वो लगभग वो सारे जो लोग थे वो उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे। और इससे पूर्व में जाऊं तो शायद 93 की यात्रा है, एक दूरदर्शन की टीम हमारे साथ थी, वो उस पवित्र गुफा में जैसे ही पहुंचे तो जैसे उनके पूरे शरीर में जैसे सिरन सी दौड़ जाती है, उनको 4 या 5 व्यक्तियों ने मिलकर ओ हो ऐसा वो उन्होंने आवाज की, और कैमरा फिर 3-4 बड़ा भारी कैमरा हुआ करता था उस समय, वो दौड़े की गिर ना जाए, क्षति ना पहुंच जाए, तो इस तरह से वो जो सारे स्थान है वो चार्ज्ड है। जैसे कश्मीर में कोई स्थान है, देव स्थान है या कोई जियारत है, उसको कहते हैं ये जो जियारत है ये बड़ी गर्म है, यानी कि वो चेतन है, तो इसी तरह से वो जो मार्ग है जहां पर हमेशा मंत्रोच्चारण होता है, जहां पर लोग श्रद्धा और भक्ति को लेकर उस मार्ग से जा रहे हैं, बम बम भोले या और नाद करते हुए जा रहे हैं, वो पूरा एटमॉस्फियर चार्ज्ड है। और ये यात्रा तो मंगलमय है, लेकिन मैं इसको देखता हूं कि ये जब यात्रा होती है ये पूरा मार्ग भारत में ही हो जाता है, विभिन्न प्रांतों से आए हुए तीर्थयात्री अपने सांस्कृतिक और जो धार्मिक उनकी जो मतभेद हैं या उनकी जो संस्कृति की उसमें भेद हैं, उन सबको भूल कर एक दूसरे की मदद करते हुए शिव जी का उनकी प्रशंसा में जय भोले या और मंत्रोच्चारण करते हुए सब मिलजुल कर चूंकि उनका लक्ष्य एक है, सब इकट्ठे होकर उस पवित्र गुफा के लिए निकलते हैं और वहां जाकर दर्शन करते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है मान सर। मेरा लास्ट सेकंड सवाल है आपसे। आकाशवाणी श्रीनगर की ये कोशिश है कि हम अमरनाथ यात्रा से जुड़ी ताजा जानकारी, यात्रा के अपडेट्स, आपके संदेश और प्रशासन के जो दिशा निर्देश होते हैं वो लगातार अपने यात्रियों, अपने भक्तों और श्रोताओं तक पहुंचाते रहें। आकाशवाणी की ये सेवा और प्रयास जो है, आपके नजदीक ऐसे विश्वसनीय माध्यम की अमरनाथ यात्रा और भक्तों के लिए क्या भूमिका है?
0: बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए है कि जो तीर्थ यात्री विभिन्न प्रांतों से जाता है उसको थोड़ी सी ही जानकारी है, उसको इतनी जानकारी है कि मैंने यात्रा करनी है, मुझे रजिस्ट्रेशन करानी है, मेडिकल चेकअप करा के रजिस्ट्रेशन करनी है, बस इसके अलावा बहुत कम जानकारी, सबको जानकारी नहीं होती है। तो जो आकाशवाणी है इसमें जो कार्यक्रम है, इसका जो प्रचार प्रसार है और इसकी जो श्रोता है वो पूरे भारतवर्ष में है और गांव तक इसकी रीच है। तो जो आप यहाँ से कहेंगे, चाहे जैसे आज मेरे से वार्ता कर रहे हैं या प्रशासनिक व्यवस्थाएं या उनके निर्णय, जैसे इस बार मार्ग जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ, इसकी जानकारी निरंतर लोगों को देना, यह भी एक उस सारी व्यवस्था में आपका योगदान है, वो प्रयास है। और मैं हमेशा से मानता हूं कि ये यात्रा एक बहुत बड़ा अफेयर है, पूरी स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऑल द आर्म्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वो इसमें लगा दिए जाते हैं और सब बड़ी खुशी से, बड़ी तत्परता से इस यात्रा में योगदान देते हैं। उसमें सारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पीडीडी है, चाहे पुलिस है, चाहे आर्मी है, चाहे ट्रैफिक पुलिस है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे वेटनरी डिपार्टमेंट है, चाहे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो ये सारे मिलकर एक सामूहिक प्रयास से इस यात्रा को सफल बनाते हैं और उसमें आकाशवाणी भी जुड़ा हुआ है। इससे मैं सहमत हूँ और आपका, मुझे लगता है आने वाले समय में भी आप इसको विस्तार से तीर्थ यात्री को इस यात्रा के बारे में और उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं इस यात्रा के दौरान करना चाहिए, क्या चीजों की उनको आवश्यकता पड़ सकती है इस यात्रा के दौरान, उसके बारे में भी उनको अवगत निरंतर आप करवाते रहे।
1: मान सर, इस साल भी लाखों भक्तों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से बाबा बर्फानी के दर्शन किए। आपके नजदीक इन भक्तों का ये पवित्र अनुभव कितना सौभाग्यशाली है और अंत में आप यात्रियों, स्थानीय लोगों और हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए 2026 के लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
0: जी, मैं इस बार, जैसे कि मैंने, मेरी जानकारी है कि लगभग 475,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए और इसमें स्थानीय लोगों का, विशेषता डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, ऐसे तो जम्मू के लोग भी इस यात्रा में, क्योंकि पहला पड़ाव तो जम्मू में ही,
1: जी भगवती नगर का, बिल्कुल सर,
0: तो इसमें सभी लोगों का एक प्रयास है। और मार्ग में जब हम चाहे बालटाल से और चाहे पहलगांव से मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जी तोड़ यात्री को कैसे सुविधा पहुंचे और कैसे वो आराम से जाए, इसका वो निरंतर ध्यान रखते हैं। और जो मार्ग में, और 2-3 वर्ष पूर्व मैंने गौर किया कि वहां जो गुफा के नीचे जो प्रसाद देने वाले लोग हैं वो सब लोकल्स हैं, मुस्लिम भाई है जो बैठकर वहाँ प्रसाद देते हैं और तीर्थ यात्री गुफा में जाने से पहले उनसे वो सामान लेता है और अपनी भाव को जोड़कर उस प्रसाद के साथ भगवान के अर्पण करता है। और संदेश मैं अंत में यह देना चाहूंगा कि जिस तरह से हम सभी अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है, अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना है और हम सब मिलकर, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड, हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करके इस जम्मू कश्मीर को और पूरे भारत को सुंदर, सुव्यवस्थित, संपन्न और समृद्धि ऐसी वो करे, ऐसी वो तरक्की करे, इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए।
1: महान जी, आपने अपने कीमती समय में से कुछ पल निकालकर आकाशवाणी श्रीनगर के इस विशेष प्रसारण के लिए हमें दिए, इसके लिए हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद, धन्यवाद आमिर जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम महान जी का और खासकर आमिर का, जिन्होंने हमें ये जानकारी प्रदान की, छड़ी मुबारक की, और उन्होंने महंत जी से बात करके हमें इस जानकारी का हिस्सा बनाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आमिर आपका, और साथ ही साथ एक बार फिर मैं आपके सभी श्रोताओं के साथ ये बात एक बार फिर साझा करना चाहूँगी जो आज आने 4:15

0: पंद्रह मिनट पर जो है नाग पंचमी के शुभ अवसर पर जो श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के रूप में मनाया जाता है, दशनामी अखाड़ा में छड़ी पूजन का महत्वपूर्ण अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। और पूजा के बाद जो है कल से यानी 18 अगस्त से 11 बजे से 12 बजे, सुबह 11 बजे से 12 बजे और शाम 6 बजे से 7 बजे तक जो है छड़ी मुबारक दर्शन के लिए उपलब्ध रहेगी। और ये जो है अवसर, ये दर्शन का अवसर जो है भक्तों के लिए एक अद्भुत अनुभव होता है। और आपको ये भी बता दें कि ये सुविधा तब तक जारी रहेगी, दर्शन की सुविधा तब तक जारी रहेगी जब तक छड़ी मुबारक अपनी यात्रा के लिए श्रीनगर से प्रस्थान नहीं करती है। तो आपको ये भी बता दें कि 12 अगस्त को छड़ी मुबारक श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा से पहलगाम के लिए रवाना होगी।
1: जय भोले।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम की संग। श्रोताओं आपको बता दें फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ इमरान नायकू ट्रांजिट कैंप पांथा चौक श्रीनगर से। जी इमरान
1: जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि छरी मुबारक इस वक्त श्रीनगर में है और इस सिलसिले में आज चूंकि नाग पंचमी है और आज जो ट्रेडिशनल छरी पूजन है या जिसे हम रिवायती छरी पूजन के नाम से जानते हैं वो दशनमी अखाड़ा मंदिर श्रीनगर में वो परफॉर्म की जाएगी, वो उसकी रस्म जो है वो अदा की जाएगी। और इसका पहले से ही जो छरी मुबारक के जो मुहाफिज है मां दीपेंद्र गिरी जी उनकी तरफ से शेड्यूल जारी किया गया था उसके मुताबिक 4:15 पर ये जो पूजन है छरी पूजन है ये शुरू होगी और ये लगभग 5:30 तक जारी रहेगा। अलबत्ता आपको याद होगा लास्ट ईयर भी जब ये 4:15 जब शुरू हुआ था तो फिर रात 8 तक इसकी जो छरी पूजन है वो जारी रही थी। और इस बार भी यही उम्मीद है कि जैसे 5:30 तक का वक्त दिया गया है लेकिन उम्मीद यह है कि लगभग 8:30 तक ये जो छरी पूजन है ये जो है जारी रहेगी। और इस सिलसिले

0: में पहले से ही बहुत सारे जो श्रद्धालु है या जो जो हम डिवोटी जिन्हें हम कहते हैं या फिर जो कुछ साधु साध्वी हैं उन्होंने या कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने इसकी रजिस्ट्रेशन की है, जो अकीदतमंद मुख्तलिफ जगहों से आते हैं तो वो इसमें शिरकत करेंगे। बहुत सारों ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन की है और कई सारे हमारे जो श्रद्धालु हैं उन्होंने आज इस सिलसिले में जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन की है और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले से ही बहुत अच्छी तैयारियां की गई थी और जो यहाँ पर श्रीनगर में इंतजाम थे वो पहले से ही किए गए हैं। और साथ ही ये भी हम आपको बताते चले चूंकि आज 5:30 बजे तक ये जो छरी पूजन होगी और इसके साथ ही कल से ही ये जो छरी मुबारक है ये श्रीनगर से यहाँ लगभग 22 तारीख तक जो है मुसलसल पूजा के लिए रखी जाएगी। और इस सिलसिले में ये भी कहा गया है कि सुबह 7 बजे से 8 बजे से अलग अलग टाइमिंग इसके लिए दी गई है। हालांकि अगर आप देखें कि जो इस छड़ी मुबारक के जो महादीपेंद्र गिरी जी है उन्होंने 11 बजे से 12 बजे का टाइम भी दिया है और साथ ही 3 बजे से 6 बजे का भी उन्होंने कहा है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं चूंकि ये इसमें कश्मीरी पंडित बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं और इसके अलावा बाकी जो डिवोटीज है वो अब जगहों से जो यहाँ श्रीनगर में रहते हैं मुख्तलिफ मंदिरों में जो पूजा के लिए आते हैं तो वो भी इस होली जो मैस है इसकी पूजा के लिए यहाँ पे आते हैं। तो इस सिलसिले में कल से ही इसकी बाज़ाब्ता तौर पर जो है पूजन शुरू होगी, छड़ी मुबारक की का दर्शन शुरू होगा और सुबह से लेके और ये मुसलसल 22 तारीख तक रहेगा और शेड्यूल के मुताबिक 22 तारीख तक श्रीनगर में रहेगी और 22 शाम को यहाँ से छड़ी मुबारक को रवाना किया जाएगा और 23 तारीख की जो रात है वो पहलगाम में इसको रखा जाएगा दर्शन के लिए। उसके बाद 24 तारीख को भी रात इसे चंदनवारी में रखा जाएगा। इसी तरीके से 25 अगस्त की जो रात है उस दिन शेषनाग में 26 और 27 अगस्त की जो रात है उस दौरान पंचतरणी में और इसी तरीके से 28 अगस्त को होली जो छड़ी मुबारक है इसे अमरनाथ गुफा तक लिया जाएगा, पवित्र गुफा तक और वहाँ श्रावण पूर्णिमा के मौके पर जो आखिरी पूजन और दर्शन है वो वहाँ पे जो है अदा किया जाएगा। सो फिलहाल अभी आज के दिन को लेके बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज ही जैसे मैंने कहा कि इसकी जो पूजन होगी और इस सिलसिले में जो मैंने पहले ही कहा कि इसका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और इस शेड्यूल के मुताबिक ही जो है पहले से ही कहा गया है जो डिवोटीज है, जो कश्मीरी पंडित है, जो हिंदूज है या जो अकीदतमंद है वो यहाँ पे पहुंचेंगे 4:15 से और आज छरी पूजन होगी और कल से इसका दर्शन भी होगा और 22 तारीख तक यहाँ ये सिलसिला जारी रहेगा। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन ने पहले ही इंतजाम किए हैं और जैसे हमने यात्रा के दौरान भी देखा कि जितने भी अमरनाथ जी यात्रियों ने ऑलमोस्ट 5 लाख से यात्रियों ने जो दर्शन किया तो कई सारे यात्रियों से हमारी इस साल जो बात हुई और इस यात्रा को लेकर उनका एक्सपीरियंस उनका फीडबैक जाना और जैसे उनने प्रशासन की बहुत ज्यादा तारीफ उन्होंने की कि किस तरीके के यहाँ पे अरेंजमेंट्स रखे गए थे। तो फिलहाल छड़ी मुबारक के सिलसिले में भी जो हर साल यहाँ इसका दर्शन इसकी पूजा की जाती है तो ये भी उसी रिवायती तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से पुरअमन तरीके से या पीसफुल तरीके से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा तक पहुंचे और वहाँ इसकी जो 28 तारीख को जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर आखिरी इसका दर्शन होगा, पूजन होगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो फिलहाल आज 4:15 से यहाँ श्रीनगर में एक अलग ही समा होगा, दशमी अखाड़ा मंदिर में एक अलग ही फिजा होगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज के दिन के हवाले से हमें ये जो है अपडेट प्रदान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया आपका भी। तो ये थे श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप से इमरान नायको जिन्होंने आज के दिन के हवाले से हमें कुछ जानकारी दी।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम की संग। इसके अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज नाग पंचमी है, जो हम सुबह से आपके साथ बात कर रहे हैं आज के दिन के हवाले से कि आज छड़ी मुबारक का जो महत्वपूर्ण पूजन होने वाली है वो 4:15 बजे शुरू होगी। तो आज हम नागपंचमी के महत्व के बारे में बात करते हैं, जो एक पवित्र और आध्यात्मिक पर्व है, जो इस बार 17 अगस्त 2026 को मनाया जा रहा है, जो श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के रूप में आता है। इस पर्व का विशेष संबंध जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा के छड़ी पूजन अनुष्ठान से भी है। नागपंचमी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो नाग देवताओं की पूजा और उनके प्रति श्रद्धा के लिए समर्पित है। ये दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। हिंदू पुराणों के अनुसार नाग देवता प्रकृति के संरक्षक हैं और उनका संबंध जो है धरती, जल और पवित्रता क्षेत्रों से है। नाग पंचमी का पर्व इन देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक अवसर है, ताकि जीवन में सुख समृद्धि और सुरक्षा बनी रहे। इस दिन लोग नाग देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें दूध, फल, चंदन और मिठाई चढ़ाते हैं। कई स्थानों पर नाग मंदिरों में विशेष पूजा और हवन किए जाते हैं। श्रोताओं, नागपंचमी के दिन नाग देवताओं से रक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। ये भी माना जाता है कि इस दिन जो है नाग पूजा करने से घर में कोई भी विषक्त जीव या संकट नहीं आता और परिवार सुरक्षित रहता है। और भी इस नागपंचमी के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे कुछ भजनों के बाद।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओ, भजन से पहले हम बात कर रहे थे नाग पंचमी की, तो नाग पंचमी का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। नाग देवताओं को शंभु जी का आशीर्वाद प्राप्त है और ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर के गले में विराजमान वासुकी नाग हैं। इसलिए नाग पंचमी के दिन शिव मंदिरों में भी विशेष पूजा होती है। श्रावण मास में जब शिव भक्ति का माहौल होता है, नाग पंचमी का ये पर्व और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन पूजा करने से न केवल नाग देवताओं की कृपा मिलती है बल्कि शंभु जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जी हाँ, नाग पंचमी के दिन श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा में छड़ी पूजन का अनुष्ठान होता है। छड़ी मुबारक जो श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्रमुख प्रतीक है, इस दिन विशेष रूप से पूजित होगा। ये अनुष्ठान यात्रा के लिए एक आध्यात्मिक शुरुआत होता है और नाग पंचमी का पवित्र दिन इसके लिए एक शुभ मुहूर्त माना जाता है। नाग देवताओं की कृपा से यात्रा सुरक्षित और पवित्र रूप से संपन्न होती है और ये पूजा यात्रा के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाता है। नाग पंचमी का सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं। भारत के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व का अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। कई स्थानों पर लोग अपने घर के आंगन में नाग देवता के चित्र बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और अपने परिवार के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। कई क्षेत्रों में नाग देवताओं के मंदिरों में भीड़ लगती है और लोग अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये पर्व समाज में एकता और प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव भी जगाता है। श्रोताओं, इस दिन कुछ विशेष नियम भी पालन किए जाते हैं। माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन खेती या खुदाई का काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे नाग देवताओं का अपमान हो सकता है। नाग पंचमी एक ऐसा पर्व है जो श्रद्धा, आध्यात्मिकता और प्रकृति के साथ जुड़ाव का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की और यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और देवताओं के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करना हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जुड़े रहिए विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा के संग।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर DTH की आराधना सर्विस एवं न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आपके सेवा में उपस्थित रहते हैं। श्रोताओं, कुछ देर पहले हमने नाग पंचमी के बारे में आपके साथ कुछ थोड़ी सी बात शेयर की, तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप प्रसन्न हुए होंगे। तो अभी जो है थोड़ी सी बात करेंगे 16 सोमवार व्रत और श्रावण मास में इसके विशेष महत्व के बारे में। जहाँ श्रोताओं, 16 सोमवार यानी 16 लगातार सोमवारों का व्रत, ये भगवान शिव को समर्पित एक बहुत पवित्र और प्रभावशाली व्रत है।

सोमवार का दिन चंद्र का दिन माना जाता है और चंद्र भगवान शिव का चंद्र भगवान शिव के सर पर विराजमान है, इसलिए इस दिन शिव जी की पूजा और उपवास विशेष फलदायक होता है। इसका महत्व तो इसलिए और बड़ा माना जाता है क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव का बहुत प्रिय महीना है। मान्यता है कि इस महीने में की गई शिव भक्ति, उपवास और जाप का अनुगुण फल मिलता है। 16 सोमवार व्रत की शुरुआत अक्सर श्रावण के पहले सोमवार से की जाती है। ये व्रत लगातार 16 सोमवार तक चलता है और 17वें सोमवार पर उद्यापन किया जाता है। और भी बात होगी इस 16 सोमवार के बारे में, आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। जी हाँ, बात हो रही है 16 सोमवार व्रत और श्रावण मास में इसके विशेष महत्व के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, आपको बता दें इस व्रत की परंपरा जो है माता पार्वती से जुड़ती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 16 सोमवारों का व्रत किया था। उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपना स्वरूप दिया। इसलिए आज भी जो कुंवारी कन्याएं हैं इस व्रत को मानती है ताकि उन्हें शिव जैसा गुणवान जीवन साथी मिले। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और गृहस्थी के सुख शांति के लिए इस व्रत को करती है। पुरुष भी इस व्रत से संतान सुख, आरोग्य और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत का लाभ उठाते हैं।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग बात हो रही है 16 सोमवार व्रत की। जी हाँ, श्रावण श्रावण में इस व्रत का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस महीने में समुद्र मंथन के वाक्य को ज़्यादा याद किया जाता है। भगवान शिव ने मंथन के दौरान विष को अपने कंठ में धारण किया था, इसलिए इस महीने उनकी सेवा पूजा से उनकी कृपा आसानी से प्राप्त होती है। 16 सोमवार व्रत से मन की शांति मिलती है, चंद्र दोष कम होता है और जीवन में सिद्धियां आती है। जो श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करते हैं उनकी मनोकामना जो है पूरी हो जाती है। याद रखिए श्रोताओं, श्रावण मास शिव भक्ति का महीना है। जी हाँ, अगर आप 16 सोमवार का संकल्प लेते हैं तो नियम से, शुद्ध मन से और अटूट विश्वास के साथ इसका पालन करें।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। इसके अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। जी हाँ, श्रोताओं, एक बार फिर हम आपको अमरनाथ यात्रा 2026 के जो है विशेष छड़ी मुबारक का कार्यक्रम, इसके बारे में हम आपके साथ जानकारी प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि सभी श्रोता जानते हैं, छड़ी मुबारक को दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से 12 अगस्त प्रातः शंकराचार्य मंदिर रवाना कर दिया गया और 12 अगस्त शाम को पारंपरिक पूजा के बाद अपने स्थान पर वापस ले जाया गया। 13 अगस्त को पवित्र छड़ी मुबारक को दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से शारिका भवानी मंदिर श्रीनगर ले जाया गया और वहां प्रणाम करने के बाद शाम को वापस अपने स्थान पर

ले जाया गया। थड़ी स्थापना ध्वजारोहण और तृतीय समारोह दशनामी अखाड़ा में 15 अगस्त को आयोजित किया। जी हाँ, जबकि पारंपरिक छड़ी पूजन आज यानी 17 अगस्त को नाग पंचमी के शुभ अवसर पर 4:15 पर आरंभ हुई। जी हाँ, दशनामी अखाड़ा में छड़ी पूजन का महत्वपूर्ण अनुष्ठान आयोजित अभी हो रहा है वहाँ पर। तो ये पूजा जो है छड़ी मुबारक यात्रा का एक अहम कदम है, जो इस पवित्र यात्रा को और भी आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। नाग पंचमी का ये दिन जो है, आज का दिन इस अनुष्ठान के लिए विशेष रूप से चुना गया है, क्योंकि इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। अभी जो है दशनामी अखाड़े में ये पूजन जो है छड़ी पूजन चल रही है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि 4:15 पर पूजा शुरू हुई, जैसे हमारे रिपोर्टर्स के जो उन्होंने रिपोर्ट्स दी उनके अनुसार। तो आपको ये भी साथ साथ में बता दे कि छड़ी मुबारक के दर्शन का अवसर श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध होगा कल यानी 18 अगस्त से सुबह 11 से 12 और शाम 6 से 7 तक हर रोज। जी हाँ, भक्त यहाँ आकर इस पवित्र छड़ी मुबारक का दर्शन कर सकते हैं दशनामी अखाड़ा में। ये दर्शन की सुविधा तब तक जारी रहेगी श्रोताओं, जब तक छड़ी मुबारक अपनी यात्रा के लिए श्रीनगर से प्रस्थान नहीं करती। ये दर्शन का अवसर जो है भक्तों के लिए एक अद्भुत अनुभव होता है, जो उन्हें श्री अमरनाथ जी के साथ आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है। जी हाँ, आपको बता दें कि पवित्र सफर का श्रीनगर के इस जो छड़ी मुबारक का पवित्र सफर होगा, श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा से पहलगाम के लिए 22 अगस्त को प्रस्थान होगा। तो ये आपके लिए कार्यक्रम का जो है शेड्यूल हमने बताया छड़ी मुबारक का, ये वही हम आपके साथ साझा कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आप प्रसन्न होकर ये जो है दर्शन का अवसर है वहाँ पर आप जाएंगे और छड़ी मुबारक के दर्शन करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओ आइए अब आरती का आनंद लेते हैं।

सभी भक्तजन भोले बाबा के चरणों में बैठकर भोले बाबा की पवित्र आरती का दर्शन कर रहे हैं, आरती श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, प्रीति के साथ, आनंद मन से भोले बाबा के भजन का ध्यान करेंगे।

0: बोलिए शंकर भगवान के
1: जय,
0: धर्म के
1: जय,
0: अधर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भाव हो,
0: विश्व का
2: आरे धोखा हो जा तो का हम माता बाके सहारे।

0: बोलिए शंकर भगवान के
1: जय,
0: धर्म के
1: जय,
0: अधर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भाव हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय,
0: मात पिता की
1: जय,
0: गुरु जनों की
1: जय,
0: सभी संतों की
1: जय,
0: सभी भक्तों की
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय,
0: आज के आनंद की
1: जय,
0: भारत माता की
1: जय,
0: शंकर भगवान की
1: जय,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय,
0: बाबा बर्फानी की
1: जय,
0: नमः पार्वती पते हर हर।

श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारी आज की सभा समाप्त होती है। आपको बता दें, श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बालतल में हमारे साथी इंजीनियर्स थे नसीर अहमद एंगर, सजाद अहमद गोरखू और शौकत अहमद। मैं आपके साथी उद्घोष का शाहिना ऋषि। श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूकवानी और श्री गुलाम रसूल आखुन। यात्रा का विशेष प्रसारण लिए हम आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित होंगे प्रातः 6:53 पर। जब तक के लिए शुभ यात्रा।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचाकर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसाकर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

अर्थ ए भगवती दुर्गा नो जय था। ए दुर्गा पार्वती जी संकट अने पीड़ा नो विनिवारण करना छे, मुश्किली लावनार आपत्तियोनु निवारण करनारा, दुर्गम नामना राक्षसनो नाश करनारा, कष्टपूर्वकनी साधनाथी सिद्ध थनारा, मुसीबतोना ए संहारक छे, अभाग्या लोकोनो उद्धार करनारा, विपत्तियोने हणनारा, दुर्बोर दुष्ट ज्ञानना निवारक, दुर्ग्ने एवा ज्ञानने अपनारा, विपत्तिजनक दैत्योना जगतने माटे दावानल देवा छे, नेथी दुर्ग दैत्य लोक दावानला कहेवाय छे। ए माताजी दुष्प्राप्य छे, एमनो प्रकाश कष्टपूर्वकनी तपश्चर्याथी पण दुर्गम होय छे, प्राप्त करवा कठिन छे, आत्मस्वरूप छे, मुश्किली जनक मार्गमा ए उपाय बतावनारा छे। दुर्गम विद्या स्वरूप अने दुर्गम साधनाथी तमनो आश्रय मेळवी शकाय छे एवा ए परांबाने अमे प्रणाम करीए छे। वळी

भवभञ्जन भवभञ्जन गुण भवभञ्जन गुण गाव अपमन अपन राम अपने

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।